0: FM 100's time check. It's 7 a.m. अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौमे आजादी ए पाकिस्तान, तीन दिन बाद दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
1: FM247365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौमे आजादी है पाकिस्तान, तीन दिन बाद
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: Like us on facebook.com/FM247365.

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशनवाइड।
4: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
5: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m. अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौमे आजादी पाकिस्तान, तीन दिन बाद
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.

सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब्ज हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्ने आजादी मुबारक।
5: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर #DilSeSarSabz के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
8: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
7: मतलब
8: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
7: स्पेशल तो लग रही है।
8: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
7: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
9: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
10: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है। उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम के सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो 3 उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
10: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
13: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
14: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।

0: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
1: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Honda Elantra जीतने का मौका
2: at shopping of 5,000 rupees
1: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
3: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
5: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
6: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्ने आजादी मुबारक।
7: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
8: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
9: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
8: मतलब
9: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
8: स्पेशल तो लग रही है।
9: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
8: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
10: शेयर्ड बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
11: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: सोना से है कामयाबी।

0: फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे हजार रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: This program is brought to you by
6: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
5: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL। And
7: Candyland, non-stop fun करते जाओ।
5: And
8: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा।
5: Like us on facebook.com/FM247365.

0: वेलकम बैक। आप कैसे हैं? और हम लोग आज बात कर रहे हैं इस बारे में कि क्या आपको लगता है कि आप, जी हाँ, या हम सब वक्त के साथ साथ तरक्की कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ इसको तरक्की करना चाहिए, इंसान को ज्यादा बेहतर, ज्यादा काबिल, ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। और मतलब कि अगर आप पहले काले थे तो फिर गोरे हो जाए इंजेक्शन लगा के, या अगर पहले मोटे थे तो थोड़े फिट हो जाए जिम के साथ साथ, और अगर आप सालों से वही मोटे के मोटे और काले के काले हैं और आमदनी आपकी नहीं बढ़ी तो फिर क्यों जिंदा है, वो भी इस मुल्क में जहाँ पे कोई तरक्की करना चाहता ही नहीं। आपको लगता मैं लीडर तरक्की करना चाहता है, कोई विजन है? या अगर मैं लीडर होती मैं कहती यार हु इज द बेस्ट लीडर अराउंड, यू नो। जैसे मेयर साहब को अपना मुकाबला जरूर करना चाहिए कि आप देखें कि सादिक खान कैसा है, या जोहरान ममदानी कैसा है, या मतलब यू नो और कंट्रीज के देख लें, और कुछ नहीं तो अपने साउथ एशिया में देखें कि मेयर्स क्या काम करें, कोई बेंचमार्क है। लेकिन खुद ही सोच लेना कि आई एम द बेस्ट दैट कैन हैपन टू कराची, तो फिर यही फिर होगा कि लोग नहीं प्यार करते। प्यार बड़ा मुश्किल से मिलता है लोगों को, ये और सिर्फ शक्ल सूरत पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे आप लोगों को लगता है मैं बहुत हुसन परस्त हूँ जो मैं हूँ, लेकिन यू नो एक कुछ वाइब होती है लोगों की, आप कहते हैं यार बस ये बंदा है। बराक ओबामा वैसे भी अट्रैक्टिव, क्योंकि उससे भी लोग प्यार करते हैं, क्यों भला। खैर मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल के बारे में हमने प्राइसेस महंगाई बता बहुत तरक्की पाई है। जो दूध आपको मिलता था बहुत सस्ता, अब पता नहीं कहां तक पहुंच गया है। पेट्रोल जो सस्ता मिलता था, खैर सस्ता तो कभी भी पेट्रोल नहीं था हमारे लिए, हमने हर वक्त रोने ही रोए। तो पेट्रोल की कीमत देख लो दोस्तों 327.62 है। तो आपने अगर आपने जो है ना इसका ख्याल रखना है कि 327.62 पे ही पेट्रोल की कीमत है। कुछ नहीं पता ये भी बढ़ जाए वो हम पे से भी आसान करेंगे, बोले इतनी कम है। अच्छा मैं समझ भी नहीं आता हमारे लीडर्स इतने राजी कैसे अपने आप से, उनको लगता है कि वो पता नहीं कोई बहुत ही अच्छे लोग हैं, मतलब कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग। ऑलराइट, और आप लोग के मैसेजेस का मुझे इंतजार है कि आप लोग मुझे ये बता रहे हैं कि क्या वक्त के साथ साथ हमने तरक्की की है, हम आगे बढ़े हैं, या हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो क्या कहते हैं आप लोग, मुझे मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे, या एट आरजे समिया इंस्टाग्राम पे। मोहम्मद अली अंसारी का मैसेज आ गया और वो कह रहे हैं इकबाल हुसैन साहब कहाँ थे आप, गौसा साहब का मैंने मैसेज मिस किया। अच्छा मोहम्मद अली अंसारी कह रहे हैं कि टॉपिक पर जवाब है, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें, हम साथ क्या हम गुजरते एक सेकेंड हम गुजरते वक्त के आस पास भी नहीं तरक्की क्या खाक करेंगे, जब हमें यूनिटी नहीं होगी तो कोई तरक्की नहीं कर पाएगा। खूबसूरत बात की है मोहम्मद अली अंसारी साहब, यहाँ पे तो यही चल रहा होता है, तुम सिंधी तुम पंजाबी तुम पठान मैं ये मैं वो। और भाई यार जब आप बाकी में कैद आजम ने सीखा भाई इत्तेहाद, पहले आपके ये बेसिक रूट्स हैं इत्तेहाद, अकेले हो जाओ भाई, पाकिस्तानी है हम कोई किसी लैंग्वेज बैरियर में नहीं है कि जी हम पठान हैं तो हम ज्यादा खूबसूरत हैं, या हम पंजाबी हैं तो हम बहुत अच्छा भंगड़ा डालते हैं ठीक है, या हम यू नो हर एक की अपनी वो है, या सिंधी है तो हमारी बड़ी मीठी जबान है, मतलब हर कोई अपनी उस पर उतर आ रहा है। भाई हर कौम की कोई अच्छी खूबियां होती हैं, सारी अच्छी खूबियों को लो, टुगेदर स्ट्रांग बनो, यूनाइटेड वी स्टैंड। लेकिन ऐसा कौन समझाएगा, क्योंकि आपके लीडर्स ही नहीं चाहते, और वक्त रोना रोते रहते हैं यही प्रोविंस कार्ड का। और अलग अलग होके आप देखें कौन सी तरक्की पा ली है हमने, प्रोविंसेस ने अपने तरक्की नहीं पाई। बलूचिस्तान का हाल देखें कितना बैकवर्ड है, इतना बैकवर्ड है बलूचिस्तान कि वहां पे एक इंडियन व्लॉगर गया और वो कहता है यार ये तो पता नहीं दुनिया कहीं रुके हुए। और मसला ये है कि वो अपनी इस लैक ऑफ तरक्की से बहुत मुतमईन है, खुश है वो, उनको पता ही नहीं, उनको परवाह ही नहीं दुनिया कहां से कहां जा रही है। तो मोबाइल पकड़ा दिया सब, मोबाइल में जी जो मोबाइल पे सीखा टिकटॉक में, उनको लगा बस अब तो जहालत का भी एहसास नहीं होता, पहले लोगों को होता था जहालत का एहसास, थोड़ी बहुत इंग्लिश हम पढ़ लेते हैं तो हम तो बिल्कुल हमें सब कुछ पता है। खबरें नॉलेज नहीं होती, खबरें इंफॉर्मेशन होती है। सिर्फ जान लेना कि दुनिया में क्या हो रहा है ये आपकी तरक्की का बायस नहीं बनेगी, दुनिया को बदलना कैसा है अपनी शर्तों पर ये होती है तरक्की। खैर बातें हम कर रहे हैं तभी तरक्की याफ्ता, आप लोग हमें मैसेज करें, और मैसेज करने का तरीका ये है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें कि HI स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर, या मुझे मेरे FB पेज पर इंस्टा पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं आज समिया के। और नीनी हम एक ब्रेक मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद सुनते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इश्तहार बहुत है लेकिन।
1: It's 8:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Battery.

0: मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
1: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा।
2: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
3: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
0: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
4: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
0: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 24/7 365।
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
6: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
8: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
7: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
8: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
7: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
6: आइए वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: इजी पैसा लाया है शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 1,000 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर #DilSeSarSabz के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका iPhone 17 Pro Max, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
7: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
6: मतलब?
7: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
6: स्पेशल तो लग रही है।
7: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
6: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
8: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैज कैश है ना।

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL एंड

0: like us on facebook.com/FM247365.
1: Let's celebrate 31 years of memory, milestone, and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
3: Welcome back my beautiful listeners. और कैसे हैं मेरे beautiful listeners? मौसम enjoy कर रहे हैं, बादल जो है ना, मतलब वो बस ऐसे ही हमें बस आ जाते हैं, हमें उम्मीद दिलाने, लेकिन अंदर से हमारा दिल ये कह रहा है कि मगर कब न जाने ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा. आगे मैं एक्साइटेड ना हो जाऊं ज्यादा. खैर, तो हम बरसात का इंतजार करते रहेंगे, न जाने कैसे होगी. अक्सर लोग कह रहे होंगे कि 14 अगस्त को ही बरसात होती है, क्या बादलों को भी पता है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है. अपनी तरह से लोग बस बोल रहे होते हैं, अक्सर होता है. अच्छा, वो बेचारे फ्लैग्स और तैयारी भी सारी खराब हो जाती है. खैर, इस बार कोई खास लोग इतने एक्साइटेड मुझे लग नहीं रहे 14 अगस्त के बारे में, क्योंकि बस क्या करें, महंगाई ने उनका महंगाई लोग करें, अब महंगाई इतनी हो गई झंडी भी नहीं लगा रहे, कम कम लगा रहे हैं लोग. ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए कुछ हो भी जाते हैं. एनजी कह रहे हैं यस वी आर बट डाउनवर्ड डे बाय डे पाकिस्तान स्लिपिंग बैकवर्ड अंडर द वेट ऑफ करप्शन. हाँ जी, आप कुछ करें ना एनजी, किसको रोकें, आप करप्शन को रोकें. और अवाम के लिए, मतलब क्या कहते हैं, अवाम को खुद ही रोकना है, क्योंकि अवाम मुझे पता है मेहनती है, हमें बस कुछ चॉइस ही नहीं है. मेहनत करेंगे तो घर चलेगा, लेकिन लीडर्स के पास बहुत चॉइस है. जो अमीर लोग हैं हमारे मुल्क के, सबसे ज्यादा बेकार वही लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो कर सकते हैं, सोच तो सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते, उसे फीते काटना चाहते. मैं तो कहती हूँ भाई, इन लोगों को फीते काटने से रोक दो. हर जगह इनॉग्रेशन वो करे जिसने उस पर काम किया है. अक्सर तो पता भी नहीं होता किस चीज की इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, वो लिख के दे रहा होता सर आप इस चीज की इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, प्लीज ये तकरीर बोली जाए. तो मैं फर्स्ट टाइम एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपने मिनिस्टर के लिए ना वो तकरीर लिखनी है. मैंने कहा है, मिनिस्टर खुद तकरीर नहीं करता. ये मेरे लिए एक रेवलेशन थी कि है उसको, मतलब हम उसकी इज्जत क्यों कर रहे हैं. मैं समझिए, इतने बड़े बड़े जो अल्फाज हैं, हम ये कर रहे हैं मुल्क के लिए और वो कर देंगे, ये लफ्ज तक उसके अपने नहीं, तो वो क्या है यार, मतलब तकरीर तो मैं उससे अच्छी कर दूं, लिख भी दूं, मतलब किस बात का मिनिस्टर है वो, कि तकरीर भी खुद नहीं लिख सकता. ऐसे तो ये हाल है. खैर, हमारी बातें जारी हो सारी हैं. अभी वक्त हुआ है क्लासिक टाइम का दोस्तों, और क्लासिक टाइम पे हम आज प्ले कर रहे हैं लट उलझी सुलझा जा रे बालम. ये एक ऐसी खातून का गाना है जो बिल्कुल तरक्की ही नहीं करना चाहती. वो कहती मेरी लट उलझ गई है, तुम ही सुलझाओ. वैसे सुस्त होने की भी हद होती है. आइए सुनते हैं.

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: This program is brought to you by
5: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
4: And HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और आज हम ये बात कर रहे हैं कि क्या हम वक्त के साथ साथ तरक्की कर रहे हैं दोस्तों, या हम पीछे ही पीछे जाए जा रहे हैं. जो भी आपका कसीन है, आप लोगों के मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं. आबिद अमीर और अली रजा का मैसेज आ गया है और क्या कहते हैं आबिद अमीर, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम समिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौजू रखा. पता तो चले कि 20 40 50 साल कहां तक पहुंचे, जैसे तैसे जी रहे हैं. कोई तरक्की भी हुई आमाल में, इखलास में, मोहब्बत में, तो आप ही बताएं तरक्की क्या हुई. माशाल्लाह आपकी तो, आप तो तरक्की कर ही रहे हैं. अच्छा, और अली रजा कह रहे हैं कि आई बिलीव टॉकिंग अबाउट द नेशन देन बिग नो. अली रजा कह रहे हैं कि जी कौम की बात कर रही है तो नहीं, बिल्कुल सही बात है. तो कौम तो हम तो कौम से है ना, तनहा कुछ नहीं. कहते हैं ना कि फर्द मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं. वसी अहमद सिद्दीकी जरा मिसरा ये सही कर दें, अलामा इकबाल का शेर है ये, बड़ा अच्छा. ओके अच्छा, वैसे वसी साहब कहाँ गायब है आप? अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, जहां तक तरक्की की बात है तो हम अगर साउथ कोरिया से ही हम अपने कंपेरिजन कर लें काफी दुखी कंपेरिजन है. तो साउथ कोरिया आजाद हुआ था अगस्त 15 को 1948, यानी कि हमारी आजादी के सिर्फ जो है वो एक साल बाद ही हो गया था. तो मतलब एक साल का फर्क ही है, मगर वो पहले से ही. एनीवेज, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान कहाँ पे है और साउथ कोरिया कहाँ है. साउथ कोरिया एक जहाँ पे जंगें हुई और बड़ी उन्होंने भी तकलीफें सही जापान से लिया साथी, तो उसके बाद वो इकोनॉमिक पावर हाउस बना और वो 8 लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में. इसके अलावा उसका हाई जीडीपी पर कैपिटा है, एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन है और वो ग्लोबल टेक जायंट्स जो आपके हाथ में, आई एम श्योर क्या तो आप आईफोन यूजर हैं, एंड्रॉयड है तो सैमसंग को तो जानते होंगे, सैमसंग. और आप तो खैर उनके खूबसूरती में भी वो लोग आगे चले गए हैं, हॉस्पिटल केयर में भी आगे चले गए हैं और यंग एजलेस ब्यूटी और उनके बैंड्स, मतलब म्यूजिक और इवन ड्रामों के अंदर भी साउथ कोरिया बहुत ज्यादा मशहूर हो गया. पाकिस्तान जो है उसका जीडीपी पर कैपिटा इज रफली $5,600 में और साउथ कोरिया का $50,000 है, फर्क आप देखें. इसके अलावा अभी तक यहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन और पब्लिक हेल्थ के अंदर बड़े मसाइल हैं. लिटरेसी रेट जो है वो मतलब साउथ कोरिया का 99% है और पाकिस्तान का अभी भी 58% भी ज्यादा है, 60% वो भी शहरों का. और जो आपका रूरल जो इलाके हैं गांव वाँव में उसे बहुत कम है. और फीमेल लिटरेसी तो मतलब समझ में, तो खवातीन से क्या मसले हैं अभी तक? तो यहाँ पे ये बातें तय हो रही हैं अभी तक इतने सालों के बाद कि खवातीन को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए. वहां पे फर्क नहीं है, वो कहते हैं, वो लोग कहते हैं इंसान को पढ़ना चाहिए, मर्द और औरत का डिफरेंस नहीं करते. या तो मर्द औरत से डिफरेंस ही नहीं है. बलूचिस्तान का हाल देखें, मतलब वो उनको कहते हैं कि खवातीन अगर पैदा हो गई हैं तो बस हो गई हैं, वो सिर्फ हमारी गुलाम बनने आई हैं, आबादी बढ़ाने आई हैं. उनको पढ़ा के क्या करना है हमने, इनको कौन सी नौकरी करनी है? अभी तक ये वो भाई पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती, पढ़ाई इंसान बनने के लिए होती है, इंसान. और वो अभी तक यहाँ यही सोच है इससे कौन सी तरक्की करनी है, वडेरा शाही, वो पता नहीं कबीले, ओ ये और वो. इतने अच्छा मसला बात ये इतने आउटडेटेड है और घमंड, साई साई साई चल रहा है यहाँ पे. अरे वो अब वो माइंड सेट है, चलिए ठीक है आपके माइंड सेट से आप तरक्की कर रहे होते, मुल्क तरक्की कर रहा होता तो नहीं. यहाँ पे सिर्फ एक तबका तरक्की कर रहा है और वो ये चाहता है कि सिर्फ वही तबका तरक्की करे और दूसरा तबका जो उसके नीचे है वो इस गलती से भी तरक्की ना करे. ये तो मेरे खासो खास में जो हमारे वडेराज हैं वो किस तरीके से मुंह दिखाते हैं, उनके बच्चे बेस्ट स्कूल्स बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़े होते हैं, वो कितने भी एवी सही, उनको भाई पैसा खर्च करके उनको बाहर एडमिशन करा दिया जाता है. और जो यहाँ का बच्चा, जो उनके गांव का बच्चा है, भले उसमें कितनी भी काबिलियत सही हो, पता कैसे चलेगा वो स्कूल जाएगा? अभी तक तो हमारे चीफ मिनिस्टर सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि जिनको उन्होंने नौकरी दी हुई है टीचर्स को और वो अच्छी खासी नौकरी है, पक्की सरकारी नौकरी, वो सिर्फ स्कूल आ जाए. क्योंकि वहां के जो, आप सोचें जिन टीचर्स की ये सोच है कि वो तरीके से बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरीके से अटेंडेंस बगैर वहां जाए लगवा लें, तो ऐसे उनको खुद उनका जज्बा नहीं है कि यार यू हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स, पढ़ा लो, तुम्हें तनख्वाह मिल रही है. लेकिन नहीं, उनको सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए होती है, दैट्स इट. और इसके अलावा अभी तक एजुकेशन की बात के लिए इतनी चीटिंग होती है, इतनी चीटिंग मैट्रिक इंटर बोर्ड्स में और सब होती है. और सिंध गवर्नमेंट के जाहिर उनको पता है तो हो रही है ना, ऐसे अंधे हैं आप, हैं आप ही के तो लोग हैं वहां पे, मतलब आप रोक नहीं सकते चीटिंग तक को, तो रोक नहीं सके तो सिंध गवर्नमेंट ने क्या कर लेना है, मुझे समझ में नहीं आता. 14 अगस्त की खुशी किस बात पे मनाएं कि हम वक्त के साथ साथ पीछे जा रहे हैं या तरक्की करें?
ویسے بھی اس بار لوگوں کی نا وہ وائب ہی نہیں ہے, پتہ نہیں لوگوں کا دل ہی ہو گیا, لیکن خیر ہم تو بنائیں گے 14 اگست, مجھے تو خوشی کا بہانہ ہی چاہیے. آپ بتائیں آپ کا کیا سین ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے ترقی کی ہے یا پیچھے ہی پیچھے جائے جا رہے ہیں؟ تو آپ خیر ہمیں جو ہے نا وہ ضرور بتائیں, تو ہم جو ہے نا آپ کے لیے گانے ہم لگا, ہمارا کام کیا ہے جی, ہم تو آپ کے لیے گانے لگاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا موڈ اچھا ہو جائے, جو بڑا ہی مشکل کام ہے شہر میں ویسے موڈ اچھا رکھنا. ہاں سپر کراچی میں, اب کراچی والوں کی نا ذرا مسئلے وہ جو ہوتے ہیں, کراچی والوں کو کیوں برا بول رہے ہو, کراچی والوں میں کیا میں نے برا بولا, انہوں نے پروٹیسٹ ہی نہیں کرنا, کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ابھی میں آ رہی تھی تو میں نے دیکھا موٹر سائیکل, اچھا میں نا میرا کوشش ہوتی ہے صبح صبح اچھا موڈ رکھوں, اسمائل کروں, ظاہر ہے میری جے ڈی ہے جاب ڈسکرپشن. اس کے بعد نا تو میں نے لیفٹ رائٹ دیکھا, تو میں نے موٹر سائیکل والوں کو دیکھا, تو میں نے کہا اسمائل کر کے دیکھتی ہوں, اور بےچارے نے مجھے دیکھ کے پلٹ کے اسمائل کرنے کی کوشش کی لیکن کر نہیں پایا, کیونکہ منہ میں جو بھرا ہوا تھا, مطلب وہ جو گٹکا گندی چیزیں لڑکے کھاتے ہیں کراچی کے, ہیں پورے کراچی کا نام بدنام کیا ہوا انہوں نے, تو وہ گٹکے سے وہ کیا اسمائل کرتا. میں نے کہا اس کو مل گئی لڑکی, پتہ نہیں کون لیا, ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, اللہ بس رحم ہے جو جن کا مطلب شوہر گٹکا کھاتا ہو وہ ان کو برداشت کرتی ہیں, مطلب سیریسلی میں ہوتی ہوں تو گھر سے ہی نکال دیتی ہوں, بیٹا تم تو جاؤ, تم بس جاؤ. تو خیر آپ بتائیں, آپ ہمیں میسج کر کے بتائیں گے کیا سین ہے, اور ہمیں میسج کرنے کا طریقہ میں نہیں بتا رہی, میں ہر وقت میں ہی بتاؤں, مطلب کون ہے بھائی آپ, بس مجھے فیس بک یا انسٹاگرام پہ میسج کر دیں آج سمیہ کے پیج پہ, اور سمیہ میرا نام ہے یاد تو ہوگا, اور آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کی ترقی کی بھی اور ملک کی ترقی کی بھی, کہ ملک کی ترقی ہوئی ہے کہ نہیں, اور طارق فاروقی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ملک کی بات کریں تو ریورس گیئر لگا ہوا ہے, ہم پیچھے جا رہے ہیں اور جاتے ہی جا رہے ہیں, بٹ یس پولیٹیشنز اور ان کے ہینڈلز خود بہت ترقی کر, ہاں ان کو بھی ترقی نظر آ رہی ہے, ہم نے یہ پلانٹ لگا لیا, ہم نے وہاں ان سے کانٹریکٹ کر لیا, وہ بھائی پہلے بیسک تو دے دو اپنے لوگوں کو, یہاں پہ گیس ہی نہیں ہے, میں پہلے گیس آتی تھی انلمیٹڈ ہے, ہم گیس کا بل ہی نہیں دیتے تھے, اللہ اتنا چھوٹا سا بل کیوں دے, اور اب گیس آتی ہی نہیں ہے, جانے دے. آپ گانا سنیں, یہ ترقی کے لیے ہم ڈیڈیکیٹ کریں, نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا.

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैट कैश है ना।
2: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और

0: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए JazzCash है ना।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
6: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी JazzCash ऐप से Jazz B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए JazzCash है ना।
7: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.
8: Suno,

जाने से क्या हो गया, मतलब हम उनको भूल जाएंगे अगर स्टैचू नहीं लगेगा। तस्वीर लगाने से फायदा नहीं है, अगर आप हमें जहर लगते हैं तो आप जहर लगेंगे ही कायदे आज़म हमारे दिल में उनकी खिदमत। और लेकिन आप अगर अच्छी कौम है, यही कायदे आज़म उनकी रूह खुश होगी। लेकिन तस्वीरें लगा रहे होते हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तस्वीरें जो है ना लगा रहे हैं और मगर उनके दिल पे हमारे बिल्कुल नहीं असर कर रहे। और मैं कहती हूँ उनको बैन कर देना चाहिए, सारे लोगों को बैन कर देना चाहिए, सारे जो तस्वीरें लगा रहे हैं। अच्छा, और बात इनॉग्रेशन करा रहे हो भाई, आप इनॉग्रेशन उन लोगों से करानी चाहिए जिन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया। आप अगर मिनिस्टर हैं तो क्या आप रोजाना जाके इनॉग्रेशन कराने चाहेंगे? इतने आप लोगों को काम है, रोड खड्डे वड्डे आपको क्या कहते हैं बनाने, और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे इनॉग्रेशन? मैं तो अगर मेरे बस में हो ना, मैं इनॉग्रेशन बैन कर दूं। और दूसरी बात, मुझे किसी ने बताई है कि हमारे खिलाड़ी, ये जो हमारे खिलाड़ी हैं वो जो जा रहे होते हैं, आज हमको बोला जाता है कि नेशनल एंथम पढ़ लो तो उनको नेशनल एंथम ही नहीं आ रहा होता, वो भाई सब लोग पढ़े। अच्छा, कुछ खिलाड़ी बड़े नेशनल एंथम पढ़े होते हैं, कुछ खामोश खड़े होते हैं। अच्छा, मैं ना बिल्कुल नेशनल एंथम सिंगर हूँ, मैं वो हूँ जो अगर सिनेमा हाउस में भी जब कहते थे ना कि नेशनल एंथम प्ले आप खड़े हो जाए, तो मैं तो पूरी आवाजें बुलंद गाती हूँ। और मतलब फायदा क्या है नेशनल एंथम का अगर आप नेशनल एंथम गा नहीं रहे? और आपको अगर नहीं आता तो आपको अफसोस होना चाहिए, आपको पाकिस्तान ही छोड़ देना चाहिए अगर आपको नेशनल एंथम नहीं आया और आप 25 साल के ऊपर है, तो नेशनल एंथम आना चाहिए। और जो खिलाड़ियों को चाहिए दिल से विद पैशन नेशनल एंथम गाएं। दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी कैसे पैशन गा रहे होते हैं, हमारे, मैंने एक से बोला, मैंने अभी डिस्कस किया, मैंने कहा हमारे खिलाड़ी क्यों चुप होते हैं नेशनल एंथम के वक्त, उनको मतलब गा क्यों नहीं रहे होते, कोई स्टाइल है? कहते उनको आता ही नहीं है। मैंने कहा ओ माई गॉड, आपको अपने मुल्क का नेशनल एंथम नहीं आता और आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे, मतलब कौन लोग हैं? तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ, खासतौर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना, उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखें क्रिकेट में तो नाम हमने डुबो ही दिया है, ठीक है, आप लोगों को खेलना मुझे लगता है भूल ही गए। मैं तो मैच, मैंने क्रिकेट ही देखना छोड़ दिया आप लोगों की वजह से कम अंग्रेज इस टाइम में जब क्रिकेट तुम लोग नहीं खेल पा रहे हो, अच्छा अंग्रेजी सही कर लो, है थोड़ा ग्रूम कर लो अपने आप के साथ, वक्त के साथ साथ थोड़ी तरक्की कर लो, नेशनल एंथम सीख लो, या खुदा ना खासा कहीं गाना पड़ा तो बोलेंगे हम खेल रहे हैं यही। अच्छा, इन लोगों का ये होता है हमने खेल लिया ना, बहुत है, इंग्लिश आने की क्या जरूरत है हमें? ठीक है, इंग्लिश का टेस्ट नहीं दे रहे आप, आईएलटीएस का टेस्ट नहीं दे रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ तो तरक्की करनी चाहिए ना। जरूरी नहीं कि 20 साल की उम्र में आपने अगर इंग्लिश नहीं आती थी तो हम 40 साल की उम्र तक इंग्लिश नहीं सीखेंगे। इंग्लिश सीखें, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, आगे कॉमेंटेटर भी तो करना। आप देखें ना कि आप वसीम अक्रम और अमीर राजा ने क्या करियर बना लिया अंग्रेजी की वजह से, अगर नहीं आती तो उनको आज कौन याद करता है? और तो ये उनको बताइए, वक्त के साथ साथ इंसान को तरक्की करनी चाहिए, और मुझे अब जाना चाहिए। थैंक यू, क्या कहते हैं, अच्छा आबिद अमी साहब इस्लामिक कंट्रोल पे हो गया वो, भाई खुदा के लिए है, आबिद अमी मैं आपसे क्या बात करूँ इस बारे में लिटरली। और वैसे भी आपके बच्चे को इतने ज्यादा नहीं, 5 बच्चे कोई इतने ज्यादा नहीं होते, हाँ 8, 9, 10 बच्चे ज्यादा होते हैं, तो प्लीज हर चीज को अपनी तरफ मत ले जाया करें, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं लूंगी इजाजत, और आई होप कि हम तरक्की करें और बेहतर इंसान बने। और आबिद अमी कह रहे हैं कि अगर तरक्की की होती तो लाइनों में आने वाला पानी हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। ये इतनी कोई प्यारी बात है कि वाकई में अभी तक इतनी तरक्की नहीं कर पाए कि घरों में पानी, बिजली, गैस आ जाए। मतलब आप कौन से पैक्ट्स की बातें कर रहे हैं, कौन से मुआहदों की बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं है। आपने वक्त के साथ बिल्कुल तरक्की नहीं की, बल्कि हम पीछे गए हैं। तो ये है पाकिस्तान का हाल। आई होप कि आपका हाल और हमारा हाल वक्त के साथ साथ बेहतर हो, दुआएं ही कर सकते हैं। एंड आई एम लीविंग यू विद दिस ट्रैक, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जब दुआ किया करें तो मुल्क के लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज। Everybody now, stand up on your feet.

0: FM 100 traffic update.
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, एफएम 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फारूक इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। एफएम 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक कुछ जगहों पर ट्रैफिक का कुछ दबाव देखा जा रहा है, जिसमें मंजिल पंप से कायदाबाद की जाने माना वाला ट्रैफिक सब स्लो मूव कर रहा है। इसके साथ साथ चौरंगी इंडस्ट्री एरिया से वो ट्रैफिक जो मुर्तजा चौरंगी से ग्रुप्स चौरंगी की जाने जा रहा है, उसके दरमियानी रास्ते पर भी ट्रैफिक का कुछ दबाव है। लिहाजा वो तमाम लोग जिन रास्तों से सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए, ताकि बर वक्त अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय एफएम 100।

0: इजी वाला बैंक।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका
4: at shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: 100 FM।
7: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।

0: वाला बैंक। तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
4: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: FM 100.
1: us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: 100 FM
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल ना करने दें और ना ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/FM247365
6: Let's celebrate
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Your location for maximum music. FM 100's time check. It's 11 a.m. अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौम आजादी पाकिस्तान, तीन दिन बाद।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन यौम आजादी पाकिस्तान तीन दिन बाद
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: Your location for maximum music. FM 100's time check. It's 12 noon. अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौमे आजादी पाकिस्तान, तीन दिन बाद
1: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
0: 100 FM
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 100
3: 31 साल FM

Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatma Khan and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji hungi aap se khoob sari baatein share karenge kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. जी हाँ, जश्न आजादी से भी हम सिर्फ 3 दिन दूर हैं, तो बिल्कुल भाई आज हम बहुत सारे मिली नगमों को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपसे एक अदद सवाल भी पूछेंगे, तो बहुत सारी चीजें आज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में होने वाली हैं। तो चलें जी प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज कर देते हैं। बाकायदगी से आगाज तो आप जानते हैं कि एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ ही होता आ रहा है एक तवील अरसे से, तो चलें जी लेट्स बिगिन।

0: की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।
1: इस मिट्टी के रंग, रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रैनुलर। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: 100 FM सोना से है कामयाबी स्कीम के

0: की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार।
1: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर रابطہ करें।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 247365

यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज, क्योंकि आप तो जानते हैं कि प्रोग्राम का बाकायदगी से जो आगाज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं होता है, बल्कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ। और जी बाकायदगी से आगाज अब हो चुका है और गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है। हमारा और आपका साथ होता है 12 से 2 के दरमियान और ये साथ भी कायम और दायम है। तो भाई बहुत सारी बातें होंगी इस वक्त कराची के लिए। जो एक अच्छी चीज चल रही है ना एक दो दिन से, वो ये है कि कराची का मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है, खुशगवार है। सुबह तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, मतलब एक्सट्रीमली अच्छा तो इन द मॉर्निंग होता है। उसके बाद ये है कि दोपहर में जरा सी धूप निकल आती है, लेकिन फिर भी इतना बुरा हाल नहीं होता कि बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं और ये नहीं। तो एक अच्छी हवा भी चल रही है और साथ ही साथ मौसम बड़ा अबर आलूद है। और ये अच्छा वेदर जो है ना, हम लोग मोस्टली अगस्त के महीने में ही एक्सपीरियंस करते हैं जो कि हम एक्सपीरियंस करें। खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज भी कर लिया, थोड़े बहुत मौसम पर भी बात कर ली, लेकिन आपको तरीका कार नहीं बताया कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो जी इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर आपने सेंड कर देना है 3636 पे। तो इस तरीके कार को जल्दी से फॉलो करें और बन जाएं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो अपने हाल हवाल हमें जरूर बताएं, कैसा गुजर रहा है आप सबका दिन, क्या है ताजा तरीन सूरत हाल, इस हवाले से भी आप हम तक जरूर आगाही फराम करें कि आप सबकी जिंदगानी जो है वो कैसी चल रही है और क्या हाल हवाल है आपके। जब तक आप लोग हमें बता रहे हैं, जब तक हम आपको नाजिया हसन की आवाज सुनाते हैं और आते हैं वापस इस ट्रैक के बाद।

ऑल राइट जी, सुनाजी हसन की आवाज भी हमने शामिल कर ली और साथ ही साथ आपके हाल हवाल भी जाने हैं कि भाई आप लोग सब कैसे हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास मैसेज आ चुका है लुक वर्ल्ड का और आज इन्होंने जल्दी हाजिरी लगा दी है। कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं लवली आरजे आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी हैं? कहती हैं आज लंच में मिक्स दाल है, जबरदस्त। अच्छा कल मैंने भी दाल खाई थी बट मैंने कल खट्टी दाल खाई थी और दालें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और आई थिंक सो कि शायद आज मेरे लंच में भी यही दाल को मैं एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। कहती हैं प्लीज प्ले ये सॉन्ग। ओके डन हो गया जी, इसको हम एक बजे के बाद जरूर शामिल करेंगे। कहती हैं काम घर के काम मैं बिजी हूँ सुबह से, आज जल्दी उठ गई थी मैं 7 बजे। ओके इतने मसरूफ है भाई मेरे लिसनर, सुबह सुबह जल्दी उठ गए हैं और फिर काम ही काम कर रहे हैं। ऑल राइट जी, तो ये मसरूफियात है लुक वर्ल्ड की आज सुबह 7 बजे। वैसे आप क्यों उठ गई थी क्या हम ये भी जान सकते हैं कि इतनी जल्दी उठने के पीछे क्या वजूहात मौजूद हैं? और भी भाई सबकी क्या मसरूफियात है, आज वक्त से पहले उठ गए या देर से उठे या क्या कुछ चलता रहा हमें जरूर बताएं। जब तक आप हमें बता रहे हैं हम आपको अली जफर की आवाज सुनाते हैं और इसके बाद वापस आते हैं। ये वो ट्रैक है जो मुझे लग रहा है कि मैंने कई अरसे से शामिल नहीं किया तो मैंने कहा चलो जी आज से शामिल करते हैं और आपको सुनाते हैं।

0: के जी, तो हमारे पास मैसेज आ चुका है, कहती हैं जल्दी उठने की वजह से मैं रात को जल्दी सो गई थी. दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस कि भाई रात को अगर जल्दी सो जाएं तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं. कहती हैं वरना मैं देर से सोती हूँ, रात को कल जल्दी नींद आ गई थी. अरे वाह भाई, ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया. अच्छा वैसे ये है कि जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो बड़ी आसानी हो जाती है, बहुत सारे काम आप कर लेते हैं और उसी के साथ साथ आप बहुत फ्रेश भी रहते हैं एज कम्पेयर टू दिस कि आप पूरी रात जागें और फिर दिन में देर से उठें. तो वो पूरा जो एक दिन का एक साइकिल होता है या वो ना बड़ा खराब हो जाता है, बिकॉज आपको थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही होती है, आप बहुत सुस्त भी हो जाते हैं. तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि भाई रात को जल्दी सोएं और दिन में सुबह जल्दी उठें. लेकिन हम लोग ना बड़ी कोई वो कहते हैं ना प्रो हो गए. प्रो इसलिए हो गए क्योंकि हम लोग रात में भी देर से सोते हैं और सुबह भी जल्दी उठते हैं, और ये चीज जो है ना अब हम इसके बड़े यूज्ड टू हो गए और हम आदी हो गए कि कोई बात नहीं, नींद पूरी नहीं हुई कोई बात नहीं, हम तो बस 5 घंटे सो गए, 4 घंटे सो गए और भाई सुबह तो जाहिर ऑफिस जाना था तो उठना ही था. ये उस कुछ वक्त तक तो ठीक लगता है लेकिन ये साथ ही साथ आपकी सेहत को भी बड़ा मुतासर करता है. तो इसीलिए 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे सोकर नींद पूरी कर लेना, दिस इज नॉट द राइट वे. आपकी बॉडी को भी एक प्रॉपर रेस्ट दरकार है कि आप इतनी घंटे सोएं, तो 7 से 8 घंटे की नींद तो लेना लाजमी है. वो रात को मोबाइल देखने की वजह से नींद कहां आ पाती है और इसी वजह से हमारी नींद जो है ना वो खराब हो जाती है. सो दिस इज नॉट द राइट वे. जल्दी सोएं, जल्दी उठें और रखें अपनी सेहत का भरपूर ख्याल. चलिए जी, फिलहाल हम चलते हैं ब्रेक की जाने. बातें वापस ब्रेक के बाद आपसे सवाल पूछेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, बहुत सारे मेरी नामों को शामिल करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना है. वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक.
1: FM 100's टाइम चेक. It's 1 p.m. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
3: आजाने जोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से.
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम. कराची और उसके मजाफात में आजाने जोहर का वक्त हुआ चाहता है.

0: in the Lunchtime Special, only on FM 100.
1: Don't miss out.
2: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the Lunchtime Special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
2: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
3: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Main aa chuki hu wapas. Aur aap logon se guftugu ka silsila jari hai. Is waqt hum program ke second half mein dakhil ho chuke hain. Yani ki iska matlab hai ki ji program mein jo guftugu ka silsila hai wo aage to badhega, lekin usse pehle ek adad riwayat hoti hai ki ji ek adad track hum aapko dedicate karte hain. Aur abhi hum Jashn-e Azadi se sirf 3 roz dur hain aur aajkal hum jo hai wo program ke second half mein mili nagmo ko shamil kar rahe hain, to bilkul aaj bhi hum aisa hi karenge, balki aaj hum 1 se leke 2 tak mili nagme hi chalayenge acche acche. Aur usi ke sath sath aaj aapse ek sawal bhi puchhenge, that is also very interesting, to is par bhi hogi baat, yani ki bahut sari baatein aapse hongi. लेकिन उससे पहले हम अपनी रिवायत को कायम करते हैं, फिर आपसे सवाल पूछेंगे, आपके सवाल के जवाब को शामिल करेंगे और देखते हैं कि भाई आज के हम जो एक आपसे सवाल पूछेंगे उसका विनर कौन होता है. तो एक्साइटमेंट तो शुरू हो गई होगी, लेकिन पहले भाई हम अपनी रिवायत को कायम करेंगे, यानी कि एक तो ट्रैक तमाम सुनने वालों के नाम, और इसके बाद पूछते हैं आपसे सवाल कि हमारा आज का सवाल आपसे क्या है.

इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सो जी हाँ, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम दाखिल हो चुके हैं और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। इसी के साथ साथ भाई तरीकाकार हमने आपको बता दिया आपके लंच में क्या है, ये तो हमारा कंपलसरी सवाल होता ही है, तो वो तो आप हमें जरूर बताएं कि आपके लंच में क्या है। लेकिन आज हम आपसे जरा डिफरेंट सवाल पूछेंगे और आज हम आपसे ये पूछेंगे कि हु डिजाइन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। तो जी हाँ, पाकिस्तान का झंडा जो है वो किसने डिजाइन किया है, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो हमें जरूर मैसेज कर बताएं, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। जी हाँ, आज से तीन रोज, अभी बिकॉज तीन रोज ही रहेगा जश्न आजादी मनाने में, तो हम रोज आपसे प्रोग्राम के सेकंड हाफ में सवाल पूछेंगे और देखते हैं कि भाई आज सवाल का विनर कौन होता है। तो हमारा आपसे आज का सवाल यह है कि पाकिस्तान का झंडा किसने डिजाइन किया, हु डिजाइन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। सो डू यू नो दिस? अगर आप जानते हैं तो भाई जल्दी से मैसेज करें और हमें बताएं, क्या पता वो विनर आप ही हों, यानी कि आज देखते हैं कि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में कौन विनर बनता है। तो सवाल हमने आपसे पूछ लिया है, जवाब का हम इंतजार करेंगे। और आप तो जानते हैं कि जब भी मैं सवाल पूछती हूं तो आपको सोचने का वक्त जरूर देती हूं, तो कोई मसला नहीं है जी, आप तसल्ली से सोचें और हमें बताएं कि आपकी नजर में हु इज द विनर, अनटिल एंड अनलेस वी आर प्लेइंग अनदर ट्रैक जिसे हम शामिल करेंगे, फिर वापस आकर आप लोगों की जुबानी जानेंगे कि भाई हु इज द विनर, देखते हैं कौन विनर है। तो बस सवाल पूछे, आप सोचें और फिर हमें बताएं। जब तक हम चलते हैं सबके मोस्ट फेवरेट पसंदीदा तरीन ट्रैक की जानिब और आते हैं वापस इसके बाद।

दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। जी हाँ, तो आप लोग इसको एंजॉय कर रहे थे, इसी के साथ साथ आज हमने आपसे एक अदद सवाल भी पूछा। और हमारा आपसे आज का सवाल यह है कि जी, पाकिस्तान का झंडा जो है वो किसने डिजाइन किया था, हु डिजाइन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। तो आपको क्या लगता है कि जी इसका जवाब क्या है, क्या आप इस हवाले से वाकिफ हैं या नहीं है? तो इस सवाल का जवाब हम तक जरूर आप शेयर करें। और इसे शेयर करने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। और लुकवर्ल्ड ने हमें सवाल का जवाब दे दिया है। दैट्स नाइस। ऑल राइट जी, तो भाई विनर कौन है आज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में, जो सवाल का सही जवाब देगा उसका नाम हम एंड में आपको बताएंगे कि हु इज द विनर। अभी मैं सबके जवाब नोट कर रही हूँ और मैंने कहा ठीक है जी, जो सही जवाब होगा वो हम आपको एंड में बताएंगे। लुकवल कहती हैं, स्कूल के बाद आदत छूट गई है जल्दी सोने की, पर अब सोच रही हूं कि जल्दी सोया करूं और जल्दी उठा करूं, काम जल्दी हो जाते हैं वरना शाम तक चलते हैं। ये बात तो है वाकई में, आपको ना जल्दी उठने की वजह से थोड़ा सा फ्री टाइम भी मिल जाता है, लेकिन जब आप लेट सोकर उठते हैं ना तो फिर आपके पास कोई मी टाइम या कोई फ्री टाइम नहीं होता, तो ये एक मसला होता है। कहती हैं, जब स्कूल खत्म हुआ था मेरा तब मैंने FM सुनना स्टार्ट किया था और आपको सुनना स्टार्ट किया था, 4 साल हो गए हैं सितंबर में। अरे वाह भाई, जबरदस्त हो गया। और मुझे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। यस, वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर। तो ये अच्छी बात है, एक आदत बन गई है लुकवर्ल्ड की हमें सुनने की। और बिल्कुल ठीक है भाई, हमारे पास एक और मैसेज भी आया है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन हमें जो है वो ये बताया है कि जी सवाल का जवाब ये है। ओके, सो वी आर नोटिंग, हम नोट कर रहे हैं कि भाई किसका क्या जवाब है। कहती हैं, प्लीज जवाब सही है या गलत है तो बताएगा जरूर। बिल्कुल, हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको सवाल बता देते हैं कि हमने आज आपसे क्या सवाल पूछा है। तो हमने सवाल ये पूछा है, हु डिजाइन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडा किसने डिजाइन किया है, हमें जरूर बताएं। और इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। तो इंतजार कर रहे हैं हम आपके मैसेजेस का और चलते हैं इस मेरी नगमे की जानिब। और इसकी रिक्वेस्ट हमसे की गई थी तो हमने कहा ठीक है जी, इसे भी हम शामिल करते हैं। और जवाब आना शुरू हो चुके हैं, सो देखते हैं कि आज मेरे प्रोग्राम का विनर कौन बनता है। इसी के साथ साथ इसकी जानिब चलते हैं और आते हैं वापस इस मेरी नगमे के बाद।

यस एवरीबॉडी, तो आ चुके हैं हम लोग वापस और इसी के साथ साथ भैया विनर भी अनाउंस कर देते हैं हमारे प्रोग्राम में। एक और इंसान ने मैसेज किया है लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, तो भाई ये गुमनाम मैसेज ही रहेगा, लेकिन इनका जवाब भी ठीक था। और इसी के साथ साथ हमें अरबाज ने भी मैसेज किया है, वो कहते हैं राजा गजनफर ने, ओके ऑल राइट ठीक है, लेकिन ये जवाब आपका गलत है। उसी के साथ साथ हमें नबिया ने भी मैसेज किया है, नबिया ने लिखा इलामा इकबाल ने, नहीं नहीं यार इलामा इकबाल ने पाकिस्तान का झंडा नहीं डिजाइन किया है। और उसी के साथ साथ हमारे पास एक और मैसेज आया, अली का अली भी कहते हैं कि जी राजा गजनफर ने नहीं। तो हमारे पास जो सही जवाब आए, एक और जिन्होंने नाम नहीं लिखा उन्होंने भी सही जवाब दिया है। और आज के हमारे इस सवाल की जो विनर हैं वो हैं लुक वर्ल्ड, जी हाँ एस आमिरुद्दीन किंदवानी ने जो है वो पाकिस्तान का झंडा डिजाइन किया है, एंड शी इज राइट, इनका जवाब बिल्कुल ठीक है। और आज के प्रोग्राम की विनर हैं लुक वर्ल्ड, सो वेरी नाइस लुक वर्ल्ड, आपने सही जवाब दिया है इसलिए आप बनी हैं विनर आज के प्रोग्राम की। तो जी हाँ पाकिस्तान का झंडा डिजाइन किया है एस अमीरुद्दीन किंदवानी ने, और ये जवाब हमें लुक वर्ल्ड ने बिल्कुल ठीक दिया है। इसी के साथ साथ कल भी हम ऐसे ही आपसे एक अदद सवाल पूछेंगे 1 बजे के बाद, और देखते हैं कि कल का विनर कौन बनता है हमारा, कल हमारा आपसे क्या सवाल होगा, इसके लिए आपको करना होगा कल का इंतजार। अंटिल एंड अनलेस रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें मुस्कुराते रहें खुश रहें। उसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो, अल्लाह।

0: a digital bank. Easy wala bank.
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: Your location for maximum music.
1: In the rhythm of life, rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on. The music plays on.
2: FM 100's time check. It's 3 p.m. अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन यौमे आजादी पाकिस्तान तीन दिन बाद This program was brought to you by
3: Step School से Foundation हो Strong. Call now at 03111117837.
4: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें
6: पाकिस्तानी के दिल की पुकार चाय बने बस टपाल दानेदार
2: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
7: fm247365
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौम आजादी पाकिस्तान तीन दिन बाद।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
4: FM247365

0: FM 100's time check. It's 4 p.m. अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौमे आजादी पाकिस्तान, तीन दिन बाद
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
3: 100 FM

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और सरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100. आपकी आवाज. Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Pakistan.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन यौमे आजादी है पाकिस्तान तीन दिन बाद
1: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
2: 100 FM।
3: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आ

0: us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 247365.

FM 100's time check. It's 5 p.m. अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौम आजादी पाकिस्तान, तीन दिन बाद

0: बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें तीन उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम के सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो तीन उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली

0: मर्जी वाला बैंक।
1: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब

0: इसी वाला बैंक।
1: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब
5: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
4: स्पेशल तो लग रही है।
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
4: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब
5: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
4: स्पेशल तो लग रही है।
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
4: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
7: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर #DilSeSarSabz के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका iPhone 17 Pro Max, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
8: खुशखबरी, सिंध की स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अपना कारोबार बढ़ाने का एक बड़ा मौका। यूनिटो पैदार और सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड की SEDF ग्रांट स्कीम के तहत एलिजिबल SMEs को 3.5 करोड़ रुपए तक की ग्रांट सपोर्ट दी जा रही है। अगर आप फिशरीज और एक्वा कल्चर, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, वेस्ट रिसाइकलिंग और डिस्पोजल, वुमेन लेड बिजनेसेस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में काम कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए है। ये स्कीम लाड़काना, ठट्टा, बदीन, थरपाकर और सजावल में काम करने वाले या इन डिस्ट्रिक्ट्स में अपना कारोबार शुरू करने वाले ख्वाहिशमंद SMEs के लिए है। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026 है। देर ना करें, अपना इनोवेटिव और वायबल बिजनेस आइडिया आज ही तैयार करें और SEDF ग्रांट पोर्टल पर अपना बिजनेस प्लान सबमिट करें।

0: your location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन यौमे आजादी है पाकिस्तान तीन दिन बाद
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
4: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
7: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
6: मतलब?
7: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
6: स्पेशल तो लग रही है।
7: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
6: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।

0: like us on facebook.com/FM247365. अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौमे आजादी ए पाकिस्तान, तीन दिन बाद
1: अभी बाकी है। हौसला जवान, अज़्म मजबूत और सफर रवा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेश क़यादत, तरक्की पसंद सोच, अवामी खिदमत के विजन की रहनुमाई में मसरूफ है। हुकूमत सिंध ने जदीद और मुफ्त तिब्बी सहूलियात का मजबूत निज़ाम कायम किया। SIUT, SICVD, JPMC, NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद सहूलियात दस्तियाब है, जबकि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ न्यूरोलॉजी में लाखों बच्चों को इलाज फराहम किया जा रहा है। SPHF दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसके तहत 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं। तालीम के फरोग के लिए हुकूमत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वेमेन, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सक्खर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज, शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स। खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन, बहाली, हुनरमंदी और खुद मुख्तार जिंदगी के मौके को मजीद वसअत दी गयी। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने जदीद शाहराहों, पुलों और राबिता सड़कों का वसी जाल बिछाया। शाहराहे भुट्टो कराची के सनती इलाकों, बंदरगाहों और मोटरवे M9 को आपस में जोड़ रही है, जबकि 141 से ज्यादा सड़कों और 825 किलोमीटर रोड नेटवर्क्स की बहाली मुकम्मल की गई, जिससे लाखों अफराद की आमदोरफ, तिजारत और रोजगार को नई रफ्तार मिली। ज़रई खुशहाली के फरोग के लिए सिंध हुकूमत ने किसान दोस्त मंसूबों का एक जामे सिलसिला शुरू किया। बेनजीर हारी कार्ड के पहले मरहले में तकरीबन 2,98,000 रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद, ज़रई अद्वियात, जदीद मशीनरी पर सब्सिडी, रियायती कर्जे, फसल बीमा और कुदरती आफात की सूरत में माली मुआवनत फराहम की जा रही है। पानी के हर खतरे को कीमती सरमाया बनाते हुए लाखों एकड़ ज़रई अराजी को दोबारा पैदावारी अमल से जोड़ा जा रहा है। धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सी पैक के तहत जदीद सनती मरकज के तौर पर तरक्की दी जा रही है। खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइट कराची, नूरियाबाद, बिन कासिम और दीगर सनती जोन्स में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाकर मुल्की और गैर मुल्की सरमाया कारी को फरोग दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट में जदीद दौर का आगाज किया। रेड बस, पाकिस्तान की पहली ईवी बस, पिंक बस और खवातीन को मुफ्त स्कूटी फराहम की जा रही है, जो खवातीन को महफूज और बावकार सफर फराहम कर रही है। तवानाई के शोबे में हर कोल मंसूबा सिंध की तरक्की का अहम संगे मील बन चुका है, जहां मकामी कोयले से हजारों मेगावाट बिजली पैदा करके कौमी ग्रिड को मजबूत बनाया जा रहा है। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट, घारो विंड कॉरिडोर और शमसी तवानाई के मंसूबे तवानाई के मुतबादल ज़राए को फरोग दे रहे हैं। ये सिर्फ मंसूबों, आदाद शुमार या तामीरात की दास्तान नहीं, खुशहाली को सिंध के हर शहर, हर गांव और हर खानदान तक पहुंचाने के अज़्म की रोशन अलामत है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178377.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m. अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौमे आजादी पाकिस्तान, तीन दिन बाद
1: अभी बाकी है। हौसला जवान, अज़्म मजबूत और सफर रवा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेश क़यादत, तरक्की पसंद सोच, अवामी खिदमत के विजन की रहनुमाई में मसरूफ है। हुकूमत सिंध ने जदीद और मुफ्त तिब्बी सहूलियात का मजबूत निज़ाम कायम किया। SIUT, SICVD, JPMC, NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद सहूलियात दस्तियाब है, जबकि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ न्यूरोलॉजी में लाखों बच्चों को इलाज फराहम किया जा रहा है। SPHF दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसके तहत 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं। तालीम के फरोग के लिए हुकूमत

0: जहां ख्वाब वहां HBL।
1: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर कारोबार माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायद आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम के सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे, क्योंकि जो 3 उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
5: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैज कैश है ना।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनाम। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस तो पाल दानेदार।

0: Digital Bank. Easy Wala Bank.
1: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: 100 FM।
3: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।

0: वाला बैंक।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब
5: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
4: स्पेशल तो लग रही है।
5: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
4: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
8: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
9: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
11: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka
12: at shopping of 5,000 rupees
11: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!

0: Digital Bank, Easy Wala Bank. Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
1: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है. उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया. बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा. जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए. ईमान, इत्तेहाद, तंजीम. ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन. इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए. तंजीम के सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी. इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे. क्योंकि जो 3 असूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे. मीजान बैंक की जानिब से यौमे आजादी मुबारक. पाकिस्तान जिंदाबाद.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹15,000 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या ₹50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
3: मतलब?
4: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
3: Special to lag rahi hai.
4: Aur price sirf 64,49,000.
3: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
5: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस का पाल दानेदार.
6: 100 FM.
7: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
4: FM247365
5: Let's celebrate
6: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
8: Aap sun rahe hain FM 100.
9: अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौम आजादी पाकिस्तान, तीन दिन बाद
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
11: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: एचडीएफसी वाला बैंक। शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना?
1: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹15,000 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IDFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL।
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IDFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: शेयर्ड बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर कारोबार माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायद आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान इत्तेहाद तंजीम। ईमान अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम के सब हिम्मत मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो 3 उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
4: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका
5: at shopping of 5,000 rupees
4: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
6: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यूफोन या टेलेनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
8: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
10: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: Hyderabad.
1: This song is brought to you by EcoStar.
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। पातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
5: facebook.com/fm247365 fm247365
6: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Valley.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Shared bundles, वो भी discount पर. Subscribe करना तो बनता है. तो बस अभी Jazz Cash app से Jazz B5 fantastic bundle लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन discount से फायदा उठाओ. अपने favorite bundles

0: फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM.
2: This song is brought to you by EcoStar.
3: सुनो

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना.
2: 100 FM.
3: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार.
4: सुनो

जब आ जाती है एक खुशबू सी फैल जाती है, परिंदे चहचहाते हैं, प्यार भरे गीतों से जग को फिर जगाते हैं, हर तरफ से एक ही सभा आती है और हमको ये समझाती है कोई है जो आवाज देता है।

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Brahim and Khan. Across the nation.
1: This is FM 100. FM 100's time check. It's 9 p.m. अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन,
2: महकाने का दिन
1: यौम आजादी ए पाकिस्तान, तीन दिन बाद
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM
4: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।

फेवरेट गाना है ये, और बल्कि गाना तो कम ही कहें, इसको तो तराना कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। बहरहाल जनाब एंजॉय करें, मैसेजेस आप लोग करते हैं के एच आर स्पेस, टेक्स करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। और जनाब आज के शो में स्वीट सी प्यारी सी गेस्ट भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद।

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं फिल्म 100 अयाज अहमद के साथ, और साथ ही साथ मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर भी, और इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी और मैसेंजर पर भी सारे मैसेज जो है वो पहुंच रहे हैं। संजीदा जी ने कुछ बड़े संजीदा सवाल कर लिए, लेकिन उससे पहले सुंदर जी क्या हाल है आपके? ठीक है, आप भी सुन रही है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, वेलकम कहेंगे आपको भी। अच्छा संजीदा कह रही कि हेयर कट का कोई मौसम के लिहाज से होती है, सर्दी में जरा दूसरी कटिंग होती है, गर्मी में, इसके बारे में पहले तो बताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेयर कट हमेशा आपकी अपनी लाइफ स्टाइल बहुत मैटर करता है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, कि आप अपने घर में रहने वाले हो और आप बहुत शॉर्ट हेयर रख लो, आप उसको मेंटेन नहीं कर सको, तो हेयर कट हमेशा आपका फेज, आपका लाइफस्टाइल, हेयर हमेशा लाइफस्टाइल पे मैटर करता है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है उसके अकॉर्डिंगली आप हमेशा अपना हेयर कट लें। आपका फेस लुक कैसा है, फेस कॉन्टोरिंग अच्छी लगेगी, लंबा लुक अच्छा लगेगा, शॉर्ट अच्छा लगेगा, और अगेन अगर आप उसको कैरी कर सकें, दिस इज वेरी मेन कि आपको कैरी करना आना चाहिए जो भी आप लुक लें।
2: ये बहुत अच्छी कैरी वाली जो बात की ना आपने, बाद लोग होते ना फिल्मों में देख के बंदा ये भाई ये माधुरी अच्छी लग रही है, जूलिया रॉबर्ट्स बहुत जबरदस्त है, भाई उनका मुंह तो देख लो, उनकी जिसामत तो देख लो, उनको तो देखो किस तरीके से वो कैरी कर रही है। अपने लिहाज से अपने उससे आपने अपने आप को जो है वो स्टाइल देना है, दूसरों को देख के नहीं। ये बहुत अच्छी बात की क्वालिटी आपने, बहुत बहुत अच्छी। अच्छा दूसरा कह रही है कि बाल गिरने की कोई उम्र होती है या किसी टाइम पे भी गिर सकते हैं?
3: नहीं नहीं नहीं, सीजन्स होते हैं, जैसे अभी आजकल का जो सीजन है ये बहुत हेयर फॉल वाला सीजन है, फिर डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है, आपके अगेन आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप किस तरह की डाइट ले रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, या हमेशा हेयर फॉल एक तो सीजनल होता है, और दूसरा जो है लोग कटिंग्स नहीं करवाते हैं ये बोल के कि नहीं हमारे तो बाल लंबे हो जाएं, लेकिन कटिंग बहुत मैटर करती है आपके बाल गिरने में और आपके बाल नहीं गिरने में।
2: चलें जनाब, ये अच्छी बात की जाए, ट्रिमिंग जरूर करानी चाहिए, खवातीन भी हो तो ट्रिमिंग कराएं आप।
3: मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को गाइड करती हूँ, आप हाफ इंच करवाओ, बट आप आफ्टर 3 मंथ्स जो है ट्रिमिंग लो, और आफ्टर 7 मंथ्स जो है आप एक अच्छा सा लुक लो कट का।
2: सही सही, तो ये आप सिर्फ खवातीन के ही मामले में है या मर्द हजरात से आपने परहेज किया हुआ?
3: नहीं नहीं, मर्द हजरात तक मैं पहुंचती नहीं हूँ।
2: ये बहुत अच्छा करती हैं, बहुत ही अच्छा करती हैं। गयासुद्दीन बलबन भी हमारे सुन रहे होते हैं, खैर मर्दों में ज्यादातर लोग गयास जैसे ही हैं जिनके बाल बिल्कुल फारिंग है, सिर्फ वो कपड़ा मार के आते हैं ताकि जरा चमकता हुआ सर नजर आए, ये भी बात होती, क्वालिटी होती है ये भी, लेकिन बहरहाल। और वो गयास सबके पूछ रहे कि मैं क्या पूछूं, मैंने आपके ब्याह पे पूछ लिया गयास भाई, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कह रहे मेरे तो बाल ही नहीं है। बालों से बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं समझता हूं दुनिया की बड़ी अजीम नेमत है, बिल्कुल आपने न सिर्फ सुकून से जिंदगी गुजारे, किसी किस्म की टेंशन नहीं, ना शैम्पू का खर्चा भी बच गया, इसके अलावा जो है वो कंडीशनर के खर्चे भी बच गए आपके, और तेल लगाने की तो वैसी जरूरत नहीं है आपको, तो चले जनाब। जैसे फायदा है, हर चीज में फायदा है, वैसे गंजे होने के बड़े फायदे हैं मैंने देखा,
3: बहुत बहुत बहुत, बाहर लोग तो ज्यादा गंजे हो जाते हैं क्योंकि वहां पे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं सैलॉन्स,
2: ठीक है,
3: तो लोग नहीं प्रेफर करते, इसीलिए वो लोग अपने आप को गंजा ही कर लेते हैं।
2: ये बड़ी अच्छी बात की आपने, जबरदस्त। अच्छा जनाब, टाइम हो गया है जरा कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, तो सुनते रहे आप FM 100, जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ऑन किया है और वो परेशान है कि ये कौन खातून है। खौला जी, हाँ जी खौला, खौला ये भाई ब्यूटिशियन है बहुत जबरदस्त, और हेयर स्टाइलिंग की बड़ी एक्सपर्ट है, और इसके अलावा जो आप अपने फेस के हवाले से या बालों के हवाले से कोई चीज भी पूछना चाहें तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, KHI स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Shared bundles, वो भी discount पर. Subscribe करना तो बनता है. तो बस अभी Jazz Cash app से Jazz B5 Fantastic bundle लगाओ और हजार रुपए के बेहतरीन discount से फायदा उठाओ. अपने favorite bundles पर बड़े discounts के लिए Jazz Cash है ना?
2: 100 FM.
3: This song is brought to you by EcoStar.

0: 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जना वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 आयाज अहमद के साथ और साथ साथ जो है आपसे भी बातचीत हो रही है। ख्वाला जी आज हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। ख्वाला जी ये बताइए कि जो नए लोग जो सुन रहे हैं उनका भी दिल करता होगा कि यार जरा ट्रेनिंग लेके आए। हम लोग तो अक्सर रहता था ना कि प्रैक्टिकल करते हैं पहले, फिर उसके बाद तजर्बे कर करके फिर हम सीख जाते हैं और 9-10 साल बाद जो है ना माशाल्लाह आपकी तरह बन जाते हैं। तो आप मुझे बताएं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसी जगह जो बंदा जाए, बच्चे जाए वहां सीखे, कोई है ऐसा?
3: अब तो इन चीजों के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं। आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, हेयर के लिए, मेकअप के लिए बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे।
2: सही, को कराची की कोई अच्छे कोई याद हो जो आपने कहीं से किया है या बस आपने भी ऐसे तजर्बे से?
3: नहीं, मैंने तो यहाँ से भी किया हुआ है, मैं बाहर से भी करके आई हुई हूँ हेयर का कोर्स।
2: घर से बाहर या कौन से मुल्क से बाहर?
3: मुल्क से बाहर।
2: अच्छा अच्छा, कौन से मुल्क गई आप, कहाँ से करके?
3: मैं दुबई गई थी, मुनीर हेयर स्टाइलिस्ट हैं, बहुत बहुत अच्छे मेरे फेवरेट हैं।
2: क्या बात है।
3: और बहुत सारे लोगों के वो हेयर में जिनको हेयर अवेयरनेस है उनके लिए तो वो बहुत फेवरेट उनका हेयर स्टाइलिस्ट है मुनीर। मैं बाहर से करके आई हूँ और यहाँ पे हमारे पास एजला की अकेडमी है, पिविट पॉइंट है, बहुत सारी अकेडमीज अब आ चुकी हैं।
2: चलिए ये अच्छी बात है जनाब, सीख के अगर आप आएंगे तो ज्यादा जो है वो नाम भी कर जाएंगे और अच्छा काम भी आपका नजर आएगा। सीखे बगैर जो आते हैं वो भी अच्छा काम करते हैं लेकिन जरा टाइम लगता है, स्टाइल में जरा वक्त के साथ साथ अपने आप को ग्रो करना चाहिए।
3: हाँ, लेकिन उन लोगों के पास बेसिक्स नहीं है, बेसिक होना बहुत लाजमी है।
2: बिल्कुल सही बात। तो यही मकसद कहने का ये था कि कुछ भी करें लेकिन अगर सीख के आएंगे तो वो डिफरेंस आपको पता चलेगा।
3: हाँ, ऐसा ही है। और आप एटलीस्ट लोगों के पास क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं अगर आप सीखे हुए होते हैं तो।
2: सही सही। तो दुबई तो माशाल्लाह धर्म में कमाती है, रुबाओं में कमाने कहाँ आ गए आप?
3: नहीं, मैं वहां पर सिर्फ सीखने के लिए ही गई।
2: सीखने के लिए तो ऐसा है, वहां पे मैं भी देखा हूँ धर्म में बहुत धर्म भरम इंसान का हो जाता है, बहुत महंगा हो गया। वैसे ये बात मैंने
3: बहुत बहुत महंगा,
2: और खास तौर पे वहाँ पे एजुकेशन और इस तरह के काम तो और भी ज्यादा महंगे। तो मतलब स्पॉन्सर था कैसे था?
3: नहीं नहीं, मैं तो वहाँ पे पेड गई थी, मैं पे करके वहाँ से सीख कर आई हूँ।
2: वाह वाह वाह जनाब, तो आप लोग भी जरा हिम्मत करें और जाके सीखें वहाँ पे। और इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे इंस्टीट्यूट होंगे मेरे ख्याल से, है ना?
3: हाँ ऐसे ही है, वहाँ पे भी है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर और अफोर्डेबल भी हो, अब तो बहुत अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं।
2: सही बात है, सही बात है। अच्छा जनाब, बालों में खास तौर पे एक्सपर्ट हैं तो मुझे ये बताइए, एक्सटेंशन जो लगा के घूम रही थी इनके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं या बस ये उतारा पहना और कोई साइड इफेक्ट नहीं है?
3: नहीं नहीं, साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं।
2: दोस्तों ये देखें, जो बड़े शौक से जो है ना ये चीजें पहन रही होती तो इन चीजों का क्या क्या होता है जरा मुझे?
3: अच्छा, इनको ना मैनेज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके लिए आपके कॉम नहीं कर सकते हैं, आप वॉश बहुत मुश्किल से करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है इसको मैनेज करना।
2: सही सही। तो भैया ये है, शौक करें लेकिन इसको मैनेज भी जरूर करें, ऐसा ना हो कि जो आपके रियल बाल हैं वो ही डैमेज हो जाए।
3: बहुत डैमेज होता है आपका रियल बाल।
2: अच्छा, और वो दूसरा मैंने देखा है, वो गरम गरम वो लगा रहे होते हैं चीजें, उससे भी बालों का बड़ा सत्यानाश हो जाता है, धुएं निकल रहे होते हैं बालों में से बालों का।
3: कौन सी चीजें?
2: वो उसको क्या कहते हैं, जो आयरन कर रहे होते हैं बालों को, वो क्या चीज होती है?
3: हाँ जाहिर है, हम लोग भी करते हैं लेकिन ये चीजें है डैमेज करती है।
2: मैं तो देखता हूँ, मैं शूटिंग में देखता हूँ हीरोइने बड़े बालों का ऐसा चमका रही होती है, जबरदस्त धुएं निकल रहे होते हैं पूरे, मैं यार आग ना लग जाए भाई बालों में।
3: इसीलिए तो अब इस तरह की इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, इन्हीं वजह से जो है आपके पास और ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं कि आप केराटिन कराओ क्योंकि आपका बाल बहुत कॉम्प्रोमाइज कर जाता है इस तरह की आयरनिंग्स और टूल्स यूज करने से।
2: चलें जनाब जरा टाइम चेक और छोटी सी ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद।
4: FM 100 टाइम चेक, इट्स 10 PM। अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौम आजादी है पाकिस्तान, तीन दिन बाद।
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है, जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: 100 FM।
6: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रूपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
7: 100 FM।
8: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
7: 100 FM।
9: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रूपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैज कैश है ना।
7: 100 FM।
10: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।
11: सुनो

0: Like us on Facebook.com/FM247365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
2: एक्टिव यमी डॉरबल 7. ये प्यार तो सुनो यार.

0: है, क्या बात है जनाब, जबरदस्त ट्रैक, जब भी सुने अच्छा लगता है। अच्छा जनाब, गपशप हो रही है बालों के हवाले से, जितना मेरी थोड़ी सी, मेरी इतनी मालूमात नहीं है खाला जी, वरना मैं डिटेल से पूछता बालों के बारे में क्या है, लेकिन लोग जो है वो बड़े गौर से सुन रहे हैं आपकी बातें और सवाल भी अच्छे अच्छे कर रहे हैं। भाई मैनेज का बात हो रही थी, वो जो एक्सटेंशन लगाते हैं तो वो कह रहे हैं कैसे मैनेज किया जाए, वो भी लगानी है हमने एक्सटेंशन और बालों का भी मैनेज करना है, किस तरह?
1: एक्सटेंशन बहुत मुश्किल होती है मैनेज करना, आपको शैम्पू बहुत मुश्किल हो जाता है करना, आपका मेन है कि कोम नहीं आप कर सकते हैं, उसकी वजह से आपके बालों में बहुत टैंगल्स हो जाती हैं, आपको सीरम्स यूज करने हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव चीज है, अच्छा है ना यूज करें, बाल वैसे ही लंबे कर लें।
0: चल फिर तो मेन उन्होंने स्यापा ही मुका दिया कि पहने ही ना, लेकिन फिर भी अगर किसी के बाल कम है, कुछ ऐसा हो, कुछ फैशन डिजाइन, कुछ मजबूरी है फर्स करें, तो उसके बाद क्या ऑयलिंग करें बालों को या पहन के ज्यादा देर बस अपना इवेंट करें और फौरन उनको उतार दें?
1: हाँ मेन यही है। और आपको मैं एक बात बताऊं तो देखें, हमारे इस्लाम में जो है ना ये एक्सटेंशन अलाउड नहीं है।
0: हाँ ये बात,
1: हम नेल एक्सटेंशन कराएं, हम लैशेज एक्सटेंशन कराएं, कोई वॉट एवर कोई एक्सटेंशन हो, आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप मुसलमान रहें, अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ें, आप ना लगाएं।
0: अच्छा, जो जो अल्लाह ताला ने आपको जो दी हुई नमाज उसी को आप

0: एनहांस करें उसको,
1: हाँ, exactly, आप वही
0: एक्स्ट्रा कुछ चीज ना लगाएं, ये ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा जनाब, तो ये होगी। अच्छा एक और भाई क्वेश्चन आया, बालों में मेहंदी लगा सकते हैं, बालों के लिए ठीक होती है, भाई सवाल है ये।
1: देखें, अगर आपने अपनी लाइफ में कलर्स नहीं करने हैं, आपने इस तरह की किसी ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं जाना, आप वाई नॉट मेहंदी लगाएं। लेकिन अगर आपने इस तरह का कुछ करना है तो आप मेहंदी ना लगाएं, क्योंकि फिर मेहंदी हेयर के ऊपर नहीं होता, कलर्स नहीं होता, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: हाँ, बड़े बुजुर्ग हमारी अम्मी और दादियां ये तो सारे मेहंदी लगाते बोलते,
1: इन्होंने कलर्स नहीं, इन्होंने हाईलाइट्स बालियाज नहीं गिराना होता था ना सब।
0: सही सही सही, ये बात भी बिल्कुल सही की आपने। अच्छा जनाब, तो मेहंदी का ये जो कॉन्सेप्ट जो था कि भाई बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, हेल्दी होती है, तो ये इतना सही नहीं है।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए, जिस वक्त हम लोग पहले मेहंदी वाला था, एक ऑरा था कि हम मेहंदी लगाते थे, तो फिर हम बाकी सारे केमिकल से दूर थे।
0: सही,
1: तो
0: सही,
1: हमें
0: सही।
1: इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था। अब जब इतनी अवेयरनेस आ गई है तो फिर आपको मेहंदी की तरफ जाने की जरूरत है नहीं।
0: चलिए, ये तो बेहतरीन काम हो गया। सुंदर जी कह रही है कि आपने क्या करना है, आयरन की डिटेल लेकर हाँ, ये बात भी सही। मैंने वैसे ही मुझे याद आ गया, क्योंकि हम जरा अक्सर होते हैं ना, तो मेकअप रूम में सारे आर्टिस्ट होते हैं, तो मैं देख रहा हूँ लोग तैयार हो रहे थे बड़े भाई, तो मैंने ऐसे मुझे सवाल याद आ गया, कोई ऐसी खास बात नहीं है। सुंदर जी टेंशन ना ले आप, मैंने वैसे पूछ लिया आपसे। वैसे ये चीजें भी सही नहीं है, ये वाली भी है ना, इस तरह की।
1: हाँ, नहीं,
0: आयरन करना
1: ये आपके बालों को अफेक्ट करती है।
0: अच्छा जी, चलिए जनाब, ये वाली बात भी होगी। अच्छा जी, अब जरा गपशप हो रही है, साथ साथ जरा म्यूजिक की जानी, आपसे बातें मैं इतनी कर रहा हूँ, गाने की शीट वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन चले कोई बात नहीं। चले जी, ये आजकल मुझे बड़ा पसंद आ गया, थोड़ा थोड़ा डांस वांस हो जाए।

0: Monday to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौमे आजादी है पाकिस्तान, तीन दिन बाद
3: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 like us on
5: facebook.com/FM247365
6: active yummy adorable 7
7: ye pyaas to suno yaar
8: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर और जनाब व्हाट्सएप पर भी मैसेज आपके पहुंच रहे हैं। अच्छा भाई, यूके से हमें नादिया मलिक सुन रही है। नादिया क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से नादिया जी? बेहतरीन टाइम होता है आपका। देखिए फौला जी, आप कहाँ कहाँ देखी सुनी जा रही, बल्कि देखी भी जा रही है। वैसे तो आपने नेट भी उस पर जा रही है, तो लाइव है ना, तो यहाँ पे भी दोस्त देख रहे हैं। उनका कोई मैसेज आ रहा है तो आप पढ़ सकती हैं। कोई
9: लेकिन अभी तक कोई आया नहीं।
8: आपको क्यों नहीं लिफ्ट करा रहा कोई? ये देखें आप, कोई वजह होगी, डर रहे होंगे कहीं ऐसा ना हो कि इसके भी चार्जेस ले लें आप।
9: मैं लाइव हूँ नहीं ना, मैं नॉर्मल वीडियोस बना रही हूँ।
8: अच्छा अच्छा, ये बाद में जाएंगे, ठीक है। ये अच्छा ये बोले ना, फिर मैं समझा लाइव जा रही है, कोई देख के ना, और सवाल क्यों नहीं कर रहा भाई। अच्छा जी, तो नादिया जी कह रही हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कि इनके पर ज्यादा जो है ना ट्रीटमेंट ना कराएं बालों को, और बिल्कुल सही। और चावल के पानी से भी कुछ ऐसा किया है, ऐसा है क्या?
9: हाँ, ये चावल का पानी भी अच्छा होता है बालों के लिए। आप अनियन वाटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज ना यूज हो।
8: जी, अनियन से मुझे याद है, लोगों ने इसके शैम्पू बना दिए। लोग कहते हैं प्याज इस्तेमाल करें तो गिरे हुए बाल भी होते हैं ना, जैसे गंजा, उसके भी बाल आ जाएंगे। क्या ये बात सही है?
9: मैंने अभी तक खुद से पर्सनली इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है इस बारे में।
8: हाँ, ये तो सुनी सुनाई बात पे हमें अमल नहीं करना ना उस पर।
9: ट्राई करके देख सकते हैं,
8: ट्राई कर, वैसे ही बाल गिर रहे हैं और गिर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, है ना?
9: क्या होगा?
8: ये वाली बात आपने बिल्कुल सही की। हिम्मत करें यार, अगर बाल गिर रहे हैं तो खैर, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। अच्छा जनाब, इसके अलावा संजीदा जी बहुत शुक्रिया, सवाल आपको पसंद आ रहे हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इसका बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, और इस्लाम के हवाले से भी उन्होंने कहा, इस्लाम में बहुत सी चीजें मना है मगर फिर भी लोग कर रहे हैं। हाँ ये बात है, चले खैर, बात ये है कि ये इस पे जरा अलग चैप्टर, अलग समझे इसके पर शो कर सकते हैं। अच्छा जी, और कुछ जरा मशवरा देना चाहें देसी तरीके से? वैसे इसके ट्रीटमेंट के पैसे तो बहुत होते होंगे या क्या नॉर्मल होते हैं, क्या होता है इसके बारे में भी हमें जरा डिस्कस को बताएं।
9: हर ट्रीटमेंट के अलग चार्जेस होते हैं, लेंथ हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से अकॉर्डिंगली होता है। आपकी जैसी लेंथ होती है उस हिसाब से होते हैं, फिर आप ट्रीटमेंट में क्या ऐड ऑन करवा रहे हैं, क्या है, किस हिसाब से, ये अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट।
8: अच्छा, बालों को जो डिजाइन करते हैं, कभी कभी आपको ऐसा होता है कि गलत डिजाइन करा रहे हैं, आप गलत कोई हेयर कट करवाना चाह रहे हैं, तो आपकी कई भी बात लोग मानते हैं या वो अपने जो घर से सोच के आते हैं मैं तो माधुरी बन के जाऊंगी?
9: नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे क्लाइंट्स मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं इस मामले में, और वो कंसल्ट, आप प्रॉपर अपने क्लाइंट को, अगर आपके पास वन टाइम भी क्लाइंट आया आप उसको अच्छे कंसल्ट करो, वो आप पे क्यों नहीं ट्रस्ट करेगा, करेंगे ट्रस्ट आप पे।
8: चलिए ये अच्छी बात है, कभी कभी होता है ना जिद भी लगा लेते हैं बात, लाख समझे फिर आप कहते हैं चलो पैसे तो तुमने देने।
9: नहीं तो फिर ठीक है, आप अपना फिर उतना लगाएं जितना आप वो कर सके उनको, फिर अगर आगे फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर आगे।
8: कभी ऐसा भी होगा आपने सोचा होगा कि ये बाल अच्छे लग रहे हैं, कटिंग की और बाल अजीब ही अजीब सा बंदा लग रहा है, ऐसा होगा कभी? बाकी
9: मैं गाइड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, फिर अगर मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है अगर आप इस चीज को कैरी कर सकते हैं फिर आप कैरी ऑन करें।
8: चले फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, चले जनाब गपशप रहेगी, और साथ साथ अगर कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं 3636 पर, और साथ साथ मैं भाई आप लोगों को ट्रैक्स भी सुना रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं। हाय हाय, इस गाने की बड़ी फरमाइश है, आप लोग करते हैं इंजॉय करें, मैसेजेस करें 3636 पर।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं 100 और साथ ही साथ आप लोग मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं और जनाब यूके से नादिया मलिक जी कुछ कह रही हैं। नादिया जी की भी जरा मैसेज आया, जरा मैं लोगों को भी सुना देता हूँ और आप भी जरा सुने जरा क्या कह रही हैं ये।
2: हाँ, प्याज जो है ना, सरसों का तेल को प्याज में पका के बड़ा अच्छा रहता है।
1: बेटा तुम बिरयानी की तरकीबें बता रही हो या क्या? प्याज और सरसों का तेल और जी बिरयानी का टचाया?
3: नहीं नहीं, अच्छा, मैं भी इस चीज को एग्जैक्टली मैं भी अपने क्लाइंट्स को, अच्छा मुझे, मैं इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि दोनों के बेनिफिट्स हैं, दोनों के बेनिफिट्स हैं, तो मैं क्लाइंट को इसलिए, लोगों को, क्लाइंट सबको बता रही होती हूँ कि अगर आपने प्याज यूज भी करना है तो आप उसको सरसों के तेल में यूज करें। अच्छा, इसका एक बेनिफिट तो ये है कि आपकी स्मेल, क्योंकि प्याज की नहीं जाती बहुत आराम से,
1: सही सही,
3: तो अगर आप सरसों के तेल में मिला के उसको मिक्स करके आप यूज कर लेते हैं तो आपका बहुत इजी टू वॉश हो जाता है।
1: ये बात भी बड़ी अच्छी बात है, बस लोग हाकी सही कह रहे हैं, प्याज लगा के अजीब परेशान हुए होते हैं कि मैं क्या लगा लिया सर के।
3: हाँ, स्मेल नहीं जाती,
1: सरसों के तेल से जो है वो स्मेल ज्यादा चल जाती है या मिक्स होकर अजीब सी कॉम्बिनेशन बन जाता है।
3: नहीं, उसको वो रेंज हो जाता है।
1: चलो फिर तो ये अच्छा हो गया भाई। दोस्तों अगर आप सुन रहे हैं तो सबसे पहले आप प्याज वैसे करना क्या होता है, जूस निकालना पड़ता है या प्याज को पूरा
3: ऐसे ही है, उसको ब्लेंड करके उसका जो पानी होता है ना, उसका जो बेसिक पानी होता है, पानी निकाल के आपने लगाना है।
1: अच्छा अच्छा, जहाँ आपकी टिंड है मतलब जहाँ जहाँ आपको फील हो रहा है कि भाई यहाँ बाल नहीं है, वहाँ आपने ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है।
3: और ओवरडोज तो किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर आप लगा भी रहे हैं तो आप मंथ में 4 दफा लगा लें, वीक में 1 दफा लगा लें,
1: सही,
3: ये 4 से 5 दफा, इससे ज्यादा इसका डोज लेने की जरूरत है नहीं।
1: चलें जनाब, ये तो बेहतरीन कॉलर जी ने जो है वो आप लोगों को मशवरा दे दिया, ज्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं है, इससे ये खर्चा भी बच जाएगा और घर के प्यास भी बच जाएंगे। उधर बेचारी बेगम ले आई भाई कुछ खाने पिकाने के लिए, आप सर पे लगाते घूम रहे, इसका भी ख्याल रखना आपने। अच्छा जी, बातचीत हो रही है, साथ साथ ट्रैक्स भी मैं सुना रहा हूँ। अच्छा, आपसे इतनी बातें हो रही है, गाने वैसे के वैसे मौजूद हैं हमारे पास,
3: आज टॉपिक अच्छा मिला हुआ है ना,
1: बेहतरीन टॉपिक मिला हुआ है। एक और ट्रैक ही जाने बढ़ते हैं और एंजॉय करें, मैसेजेस करें 3636 पर।

0: best of 90s, 80s, and today's with Ayaz Ahmad.
1: अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन,
2: महकाने का दिन
1: यौम आजादी ए पाकिस्तान, तीन दिन बाद
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
4: 100 FM
5: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: 100 FM
6: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
4: 100 FM
7: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: 100 FM
8: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।
9: सुनो

0: वेलकम बैक सुनरे एफएम 100। वाजिद भाई ये गाना सुना आपने, अब्दुल वाजिद हमें मैसेज कर रहे थे मेहंदी हसन के बारे में, तो वो मैं मंडे के वाले दिन प्ले करता हूँ। आज जरा कुछ अपबीट गाने होते हैं और उनको शामिल करते हैं। अच्छा जी, नादिया मलिक कह रही है कि बिल्कुल आपकी बातों से वो मुत्तफिक हैं, कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, क्या बात है। अच्छा जी, शीरी मजारी का भी यहाँ जिक्र कर लूँ, उनके भी बाल वैसे वाकई ऐसे थे कलरफुल जरा सा। अच्छा जी, होते कुछ लोगों का स्टाइल भी होता है, कुछ अपना स्टाइल बना। आपने कभी दिल किया, आपने भी कभी रंग बिरंगी बाल बना लियो?
1: एक दफा किया था।
0: अच्छा अच्छा, हस्बैंड ने कहा बेटा क्या हो गया, तबीयत तो सही है तुम्हारी?
1: जब हस्बैंड था ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा, उस वक्त तो तजर्बे किए जा सकते हैं। अच्छा जनाब, हस्बैंड वाली बात भी हो गई है, लव मैरिज अरेंज मैरिज क्या है?
1: जी जी, लव मैरिज।
0: हाय हाय, क्या बात है जनाब, पूरी कहानी लिखी जा सकती है फिल्म की?
1: जी बिल्कुल ऐसे।
0: चलो अच्छी बात है यार, ये अच्छी चीज है।
1: 100 पेज की
0: और सब पेज में यही होगा लव यू, बस इसके आगे नहीं कुछ लिखा। अच्छा जी, अच्छा जनाब, बातचीत कर रहे हैं साथ साथ जनाब, मैसेजेस भी आप लोगों के पहुंच रहे हैं। संजीदा जी क्या बात है, कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त बात की, नेचुरल मेकअप बेहतरीन। जनाब मैं क्या मेकअप शेकअप तो इतना मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि आज खौला हमारे साथ हैं और उनकी नॉलेज तो नो डाउट जनाब बहुत ही अच्छा, और सबसे अच्छी बात ये खुद भी उसी तरह जैसे वो बात करी खुद भी वैसे ही आई है वो, ये नहीं कि वो गोला गंडा बन के बंदा पूरा तैयार होकर आता ना, जैसे वो वैसे भी बुरा लगता है आदमी को, क्या बोलती है। वैसे मैंने देखा मेजोरिटी लोगों जो मर्द नजर आते हैं उनको ज्यादा मेकअप पसंद नहीं आता है ना?
1: पसंद ही नहीं आता,
0: सही बात।
1: मैं अपने काफी लोगों को बताती हूँ कि मैं वो मेकअप आर्टिस्ट हूँ जो शोहरों को पसंद आती हूँ।
0: सही बात है, बाद मुंह ही चेंज कर देते हैं बिल्कुल, वो मुंह धुला नहीं और अंदर से कोई और आइटम निकला है।
1: मुझे रिव्यूज भी यही आते हैं, हमारे हस्बैंड को अच्छा लग गया, हमारे हस्बैंड भेज रहे हैं कि यहीं जाओ, हमारे अब्बू भेज रहे हैं।
0: बस आपने बिल्कुल सही नर्स पकड़ी है, हस्बैंड जो है ना उसी ने पैसे देने होते हैं तो उनके पसंद का काम करें तो वो ज्यादा अच्छा है, वेरी नाइस। तो दोस्तों जितने जो मेकअप आर्टिस्ट हमें सुन रही है तो देख लें आप खौला की बात कितनी अच्छी है कि भाई हस्बैंड पर थोड़ी जरा तवज्जो रखें, उसको किस तरह का मेकअप पसंद है। अच्छा जनाब, बिल्कुल बातचीत हो रही है, मैसेजेस करें आपके चार स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। और वक्त हो गया है कोई 2 मिनट की ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: भाई जना जबरदस्त ट्रैक अली हैदर की खूबसूरत आवाज, अली भाई की वैसे ही आवाज खूबसूरत। अच्छा जनाब जरी नूर कहनी है शो अच्छा है आज का, जरी नूर आज का अच्छा वैसे नहीं होते कि अच्छे। चले जनाब बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भाई। जाहिर बात है खाला जी आई है आज और आप लोगों के जो प्रॉब्लम है उनको भी डिस्कस कर रही है तो अच्छा तो हो ही। लव यू अयाज भाई अब्दुल वाजिद ने कहा, अरे वाजिद भाई बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया। और संजीदा कह रही है कोई सपना तोड़ गया कोई अपना छोड़ गया सब खैर। इतना दुखी सॉन्ग बेटा जलसों के साथ एक गाना ऐसा भी बीच में शामिल करता, कोई दुखी बंदा बैठा हो उसके होता ना दुखी दिलों की झनकार उसके लिए भी कोई गाना होना चाहिए जो उनके लिए था। तो हर चीज को अपने पे नहीं लेना, अपने रिलैक्स रहना। अच्छा जनाब तो खाला जी बातें तो हम करते रहेंगे मेकअप की भी बालों की भी और आम जिंदगी की भी, लेकिन ये मैं पूछना चाहूंगा पहली दफा आप आई हैं यहाँ कैसा लगा है आपको, एंजॉय किया आपने एफएम 100 को कि नहीं?
1: हाँ एंजॉय किया मजा आया।
0: चले बहुत शुक्रिया लिसनर्स हमारे आज बड़े प्यार से अपने मसले बयान कर रहे थे।
1: लोगों को मजा आया आप ये पूछ लें उनसे।
0: देख लें आप जरी नूर ने तारीफें कर डाली हैं, संजीदा जी ने तारीफ कर डाली है और इसके अलावा कुछ लोग और हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। घर में बता के नहीं थी, घर वाले नहीं सुन रहे आत्मा?
1: नहीं घर में नहीं।
0: वजह क्या थी? मियाँ तो सुन रहा होगा।
1: घर वाले हैं ना मेरा साथ ही तो आए हैं।
0: हाय हाय बस बेचारा इस उम्र में मियाँ ही सुनता और तो कुछ सुने ना सुने ये बात मैंने नोट की। अच्छा जना आप जानने से पहले एक दो और जो गाने मैं पूरे पूरे ना सुना सका आपको, जैसे कि ये ट्रैक। क्या बात है कैफे खलील भाई भी बहुत आने हैं।

क्या बात है जनाब, जबरदस्त ट्रैक पूरा मैं आपको सुना था, लेकिन टाइम क्योंकि कम है और एक ट्रैक जो खास तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, जाते जाते जरा एनर्जेटिक माहौल हो जाए।

0: FM 100's time check. It's 11 p.m. अपने मुल्क को चांद की तरह जगमगाने और फूलों की तरह महकाने का दिन, यौमे आजादी है पाकिस्तान। तीन दिन बाद
1: facebook.com/fm247365 FM247365.
0: 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365 FM 247365

Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan. Hariri. मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुनो म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक, और एक बजे तक करेंगे खूब हल्ला ते गुल्ला, वो भी मिक्स ओल्डी गोल्डी भी होगा और मिली नगमे भी होंगे। इस अलगुले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 बार। अगस्त का महीना है जनाब, आपको बताइए आजादी का महीना है, और इस हवाले से मैं कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूं जनरल नॉलेज का पाकिस्तान के हवाले से, तो वो तो करेंगे ही, हैं जी, जी हैं जी, और नालो नाल अपने मुल्क के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन वो भी आप लोगों के साथ साथ चलती रहती हैं। खैर जी, सवाल करने से पहले आप लोगों को वार्म अप करेंगे, और वार्म अप करने के लिए हम चलाएंगे एक ओल्डी गोल्डी बड़ा जबरदस्त सा मिली नगमा, और उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आएगा। एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सोनियो, धरती हमारी है। ये था जनाब जोहेब हसन की आवाज और मेरी नगमा, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। मैसेजेस कर रहे हैं आपके एचआई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर, और मैसेजेस माशाल्लाह से आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि मैं लेट आया, मगर उसके बावजूद आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा जनाब, सवाल की जानिब जाते हैं। मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए, पाकिस्तान का कौमी फूल आपको बताया चंबेली, कौमी जानवर बताया मारखोर, और भी बहुत सारे सूबों के हवाले से भी आपको बहुत सारी बातें बताई। आज कुछ चर्चा करेंगे आज के दौर की, कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 को, तो 1947 को पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों का क्या हाल था और पाकिस्तान का क्या हाल है, ये तमाम थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे अपने आप को, इस आवाम को, और उसके साथ साथ सवाल भी फ्लोट करते हैं। तो आज आपसे बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा हूं, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है और पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, ये आप दोनों सवालों के जवाब आपने बताने हैं। अच्छा, मेरे जहन में ये था कि कुछ आज पाकिस्तानी मूवीज के जो ट्रैक्स चलाऊंगा वो 90s के बाद वाले चलाऊंगा, 2000 से, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, मिक्स चलाएंगे 2000 के बाद वाले भी, और जो है वो 60s 70s और 80s के भी, तो साथ ही साथ थोड़ा सा चलेगा सिलसिलेगा, फरमाइश ना करें तो बेहतर है, खसूसी तौर पर 14 अगस्त तक जो मैं शोज कर रहा हूं। सवालात मैंने आपसे कर लिए हैं और आप लोगों ने देना है जवाब। फिलहाल जाएंगे आपके मैसेजेस की जानेब, और फीदा काटा है सबसे पहले मेरी प्यारी सी बहन सबा गुल ने, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, आपको लाला को संजीदा भी मुश्क माहौर, और सब सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे यूसुफ भाई पापा उससे आ गए हैं भाई, क्या बात है, तमाम ही एफएम 100 के सुनने वालों को, फैमिली को, खुसूसी तौर पर हमारी आंटी चाची रूसा गुलबान, और तमाम डॉक्टर इमरान भाई, खिताब लाला, गुफरान भाई, और मेरे वालिद मोहतरम को उन्होंने सलाम कहा है। आने वाली 14 अगस्त सबको एडवांस में मुबारक, वैसे 14 अगस्त को मेरी बर्थडे है, अल्लाह जी यूसुफ की आपकी वाले साहब को अल्लाह पाक सेहत और सलामती अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। यूसुफ भाई फिर तो मतलब डबल डबल जशन है जी, हैं जी। और नदीम भाई लाला के लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा दें अपनी मर्जी का, सबागुल कह रही है बिल्कुल चला देंगे आपके लिए आपकी तरफ से। और हमारी शहजादी है ना जरीन नूर भी आ गई हैं, तमाम सुनने वालों को, मेरे वालिद मोहतरम को और संजू को सलाम कहा है उन्होंने। अब्दुल वाजिद साहब कह रहे हैं नदीम अख्तर आओ, आ गया भाई आ गया। और अमीन चार्ली कह रहे हैं सलाम के बाद एने भाई, बी हैप्पी प्यार बिग ब्रो के से हैं आप, और हमेशा की तरह झकास शो होगा, और तमाम फैमिली को सलाम कहा है, पगली बहना को भी सलाम कहा है उन्होंने, सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा, बिल्कुल कर देंगे जनाब। और जरी नूर ने कहा कोई अच्छा सा सॉन्ग संजू को डेडिकेट कीजिएगा, बिल्कुल अच्छा सा सॉन्ग करेंगे। अयूब लाला आ गए, अयूब आफरीदी जाने जिगर या हबीबी पखैर राग ले यार, जीते रहो सबा गुल, ये सबा गुल को जीते रहोगा या मुझेगा। कह रहे सबा गुल मुश्क हिना महानूर और तमाम सुनने वालों को उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा है, मुझे पता है आपने मुझे कहा है। और अब्दुल वाहिद साहब कहते हैं कि नदीम अख्तर आओ भाई, कब से आपका इंतजार कर रहा हूं, आई सो स्वीर यार, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, देर आए दुरुस्त आए, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, इस तरह तो ये आपकी मोहब्बत है, मैं आ गया, छुट्टी भी मार सकता था यार, लेकिन बस फंस गया था कहीं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और अक्सा आ गई हैं, अक्सा कहती हैं अक्सा आपकी मैसेजेस देख के अच्छा लगता है, क्योंकि आप कम कम मैसेजेस करती हैं, मगर इतना बताया कि आप सुनती हैं। सलाम की बात करेंगे, क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी है, मैं डर गई थी कि आप नहीं आएंगे,
شکر ہے آپ آئے, بہت خوشی ہوئی, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تمام سننے والوں کو سلام کہا انہوں نے. جیتی رہو میری بہنا, بہت بہت شکریہ آپ کے پیارے سے میسج کا. اسی بات پر ہم گانے کی جانب ابھی نہیں جائیں گے, کیونکہ ابھی ہم نے جانا ہے ایک چھوٹی سی ننی منی سی بریک کی جانب. بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو گانے کی جانب لے کر جائیں گے. تو ایک چھوٹی سی بریک.

वेलकम बैक कहेंगे इस परचम के साए तले। हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और हम एक हैं, हम एक हैं। मैसेजेस कर रहे हैं आप 3636 पर, मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA। सुन म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी रहेगा। पाकिस्तान का कौमी परिंदा, जानवर का नहीं बोल रहा, परिंदा बोल रहा हूं, उड़ने वाला, और पाकिस्तान का कौमी खेल, इस हवाले से मैंने आपको सवाल किए और आपने जवाब देना। अच्छा जनाब, थोड़ा सा चर्चा करते हैं रिलेटेड टू फी जमाना से मुराद ये कि आजकल का दौर और उसके साथ साथ हमारे नेबर्स यानी कि हमारे पड़ोसी मुमालिक जिनमें इंडिया भी है, जिनमें बांग्लादेश भी है, जिनमें श्रीलंका भी है, जिनमें और कौन कौन से मुल्क है बताएं, अफगानिस्तान है, ईरान है, तो ये जो सरहदों से जो पाकिस्तान के चीन है, तो ये तमाम मुल्क पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा अपना जुग्राफियाई तौर पर अगर पाकिस्तान का मुताला करें ना, तो बड़ा मजा आएगा आपको और आपको एहसास होगा, अबे यार ये क्या हो रहा है यार, इस तरह कहेंगे आप, क्या था पाकिस्तान और क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। कहने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ, आजाद होने के बाद एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह 1947 में पाकिस्तान जो है वो आजाद हुआ, और उसके बाद 1947, 1948, 1949, 1950 तीन साल हो गए, फिर 55 पर आ जाए 8 साल हो गए, और फिर 56, 57, 58 ठीक है, तकरीबन 10-11 साल के बाद पाकिस्तान ने जो है वो एक फ्लाइट अपनी पकड़ी। फ्लाइट से मुराद ये है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गया, और ऐसा गामजन हो गया कि पाकिस्तान में बेतहाशा जो पोटेंशियल था वो पूरी दुनिया ने भांप लिया कि भाई ये खतरनाक लग रहा है भाई सब कुछ बहुत, यानी कि समझ रहे ना आप। तो वैसे जितने भी जेंजीज हैं, नौजवान नस्ल जितनी भी है, उनको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के दौर में ही ये इंटरनेट आया है, ये इसने आकर दुनिया ही बदल डाली, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ही बदल डाली, सोच फिक्र बदल डाली, और यही सिलसिलाकार हमारे नौजवानों के साथ भी है, जाहिर है वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो हमारे पाकिस्तान में किस तरह हो रहा है ये भी आपको पता चलेगा। अगर आप कहेंगे जी पॉजिटिवली बहुत आगे जा रहे हैं, बेशक जा रहे हैं, मगर ज्यादातर मेजॉरिटी किस जानिब जा रही है, इसको भी इसका भी एक मवाजना करेंगे और आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या सिलसिलाकार है। देखें, आपके और मेरे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, 25 करोड़ की आवाम है, उन 25 करोड़ में जो काम करने वाले लोग हैं, मिसाल के तौर पर 5-6 करोड़ हैं, मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, तो उन 5-6 करोड़ों में पढ़े लिखे कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं, जहालत की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, जाहिल होने का जो है वो आप कंपैरिजन जो है वो पढ़े लिखे के हिसाब से नहीं कर सकते, ये पढ़ा लिखा है ये जाहिल है, नहीं जी, पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है, एक होता है पढ़ा लिखा और एक होता है अनपढ़ा, ठीक है जी, और जहालत जो है वो दोनों में ही मौजूद होती है, जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान जाहिल ना हो। तो खैर, चर्चा जो है मैं इस हवाले से ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान क्या है और हम इस मुल्क की कदर नहीं कर रहे,

वेलकम बैक। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, वाह जी वाह क्या बात है। और लाला कहते हैं वाह जिगर बहुत अच्छा सॉन्ग है। लाला पसंद आए आपको? लाला भी उठ गए, फुल टाइम है, हैं जी ते हैं जी। और कॉल ठीक हो गई है, कॉल लग रही है, कॉल पिक कर लें प्लीज। कौन है भाई, नाम तो बताएं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो यहाँ पर ये बिल्डिंग को हो रहा होता। और वक्त तो रुक सकती की तरफ चल रहा है, संजू कह रही है ना जी ना। और जनाब आपके आने से जल तरंग बज उठे, क्या बात है, सॉन्ग याद आ रहा है। लेकिन क्या करें संजू, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में हम तो गाने वो नहीं चला रहे, यानी कि क्या उसको कहते हैं, फरमाइश नहीं ले। और मुश्क के मैसेज क्या कह रही हैं, ऊपर मैसेज है ना, जो भी समझ आए शामिल कर लें। हैंडसम भाई, चाचू वाला कर लिया, संजू वाला कर लिया, कल के शो के ऑसम होने का भी कर लिया। और ओके अच्छा जी, कहती है कि हैंडसम एक बात का जवाब दें, लोग प्राइवेसी क्यों लगाते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, फारिग थी सोचा आपसे पूछ लूं। आप फारिग ना हो तो भी पूछ सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे ऐसा है, देखिए इनसिक्योरिटी कहूंगा मुश्क, आपने बड़ी अच्छी बात की, इनसिक्योरिटी जो है वो उसके लिए प्राइवेसी लगा लेते हैं लोग। और दूसरा ये है कि जो इस वक्त माहौल चल रहा है उस हवाले से एहतियात बहुत जरूरी है, खुसूसी तौर पर लड़कियों के लिए। मुश्क आपके लिए भी मैं ये कह रहा हूं, और जितनी भी नौजवान लड़कियां इस वक्त इंटरनेट को यूज कर रही हैं वो प्राइवेसी लगा लें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि अगर किसी लड़की ने प्राइवेसी नहीं लगाई, वो आपके साथ दोस्ती भी कर रही है, बात भी कर रही है, इजी लोड भी मंगा रही है, तो हो सकता है वो लड़की ना हो, क्योंकि आजकल लड़के बहुत अच्छी आवाज निकाल लेते हैं लड़कियों की। ऐसा भी होता है, यानी कि समझ रहे ना आप। और फरीदा बुरहानुद्दीन मेरी प्यारी सी बहना भी आ गई है, कह रही है 14 अगस्त को सेलिब्रेशन कितने बजे होगी और कहाँ होती है, और मैं और कौसाए शामिल होना चाहते हैं। भाई पूरे पाकिस्तान में हो रही होती है, आप क्या नाम है, कायरे आजम के मजार चली जाए, उसके अलावा इंटरनेट के थ्रू आपको पता चल जाएगा मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो भी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, यानी कि समझ रही है ना आप। फरीदा बुरहानुद्दीन मुझे पता है ये आप ही हैं। और अरे कुछ बातें जो हैं रूहेमन हम अपनी जानिब से भी कर देते हैं, आप खामखा ऐसे समझती हैं कि हमने आपकी ही बात की है। आपके जो मैसेजेस होते हैं ना, जितने भी आ रहे होते हैं उनमें मैं अपना भी तड़का लगा लेता हूँ। तो संजू का एक मैसेज था, उस पर मैंने अपनी तरफ से फरमाइश वाला तड़का लगा दिया। संजू कह रही मैंने कब कहा था, मैंने कहा कोई गाल नहीं की, हो जाती है हमसे भी गलती, यानी कि समझ रही है ना। मिर्जा साहब कहने पे ने प्ले लिस्ट में अगर ए वतन पाक वतन हो जाए तो क्या बात है, थोड़ी क्या ही बात है, तुम और बड़े अच्छे गाने सुनाएंगे जय जनाब, तुसी डोंट वरी। नदीम भाई बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हवाले से दी है आपने, इस पर हमें गौर करना चाहिए। मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैंने आपको एक क्यू दिया है, यानी कि एक तरफ मुतवज्जो किया है, इसको जरूर देखें आप। जो मैंने आपको कहा 1950 से लेकर और 2020 तक के पाकिस्तान की फुटेज देखिए, और जिन ममालिक का मैंने नाम लिया, जो तरक्की पजीर ममालिक हमारे साथ साथ के हैं, उनके बारे में कहा। चलिए एक और बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन देता हूं, उसके बाद आपको एक गाने की जानिब लेके जाता हूं। आपको एक मिसाल दे देता हूं कि 1960 से ही आ जाते हैं कि 1960 में इस वक्त डॉलर की क्या कीमत है, आपको पता है? नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा। 1960 में एक डॉलर जो है वो पाकिस्तानी ₹4.5, यानी कि ₹4.75 या ₹4.76 का था। उसके बाद 5 साल गुजर गए, आप जरा ये जरा गौर तलब बात यह है कि 1960 को ₹4.75 का एक डॉलर बराबर था पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान में अगर एक डॉलर अमेरिका का मैं किसी को दूं तो वो मुझे तकरीबन ₹5 की चीज देगा, ठीक है जनाब।
फिर 5 साल गुजर गए यानी कि 1965 में आ जाए, तो 1965 में भी डॉलर की कीमत स्टेबल थी, वहीं पर खड़ी थी 4.76 रुपए पे। उसके बाद आपको हैरत होगी कि 1970 में आ जाए, 1970 में, यानी कि 10 साल गुजर गए 1960 से 1970 पर आ गया, तब भी जो है डॉलर की कीमत 4.76 रुपए थी, यानी कि 60 से लेकर और 1970 नहीं बल्कि 71 तक आ जाए आप, 1971 तक, 11 साल तक स्टेबिलिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी की ऐसी थी कि डॉलर जो है वो 4.76 रुपए का था। फिर आया 1972, तो 1972 में ये एकदम जिसको कहते हैं ना कि ये जंप किया, और उसकी वजह ये थी कि 1971 को जंग हुई थी खतरनाक वाली, तो जिसकी वजह से डॉलर जो है 4.76 रुपए से जंप करकर 8.68 रुपए पर चला गया, यानी कि तकरीबन समझिए कि 4 रुपए के करीब डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। और फिर 1973 में ये डॉलर जो है वो 10 रुपए पे चला गया, 9.99 रुपए पर चला गया, यानी कि तकरीबन 1.5 रुपया जो है एक साल में ही बढ़ा दिया गया। अब आप, मैं आपको ये कंपैरिजन बता रहा हूं कि 71 में क्योंकि वॉर हुई थी तो इस वजह से 100% तकरीबन बढ़ गया, 4.76 रुपए से 8.68 रुपए 68 पैसा जो है वो हो गया, तकरीबन 4 रुपए बढ़ गया। और उसके बाद ये सिलसिला कार, ये फासला जो है वो कैसे बढ़ता गया, ये मैंने आपको बताना है, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तरक्की की बजाय किस जानिब गामजन था और कौन से सन से ये बैंड बजना शुरू हुआ, ये भी आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। इसी बात पर जनाब आपको लेकर चल रहे हैं हम एक और बहुत जबरदस्त कौमी नगमे की जानिब, और ये स्पेशली हमारे छोटे भाई नवीद भाई जो हैं, ये उनकी फरमाइश कह लें, उनकी पसंद कह लें, और उनको हम डेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नवीद भाई की जानिब से ये तमाम जितने भी सुनने वाले हैं, तमाम पाकिस्तानियों को ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं। एलो फड़ो

वेलकम बैक आएंगे जनाब दिल जीवे जीवे जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा। आपके चंद मैसेजेस को शामिल करते हैं, उसके बाद फिर आपको ये पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से जो मैं आप लोगों को डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से ईयर बाय ईयर जो फर्क है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उससे आपको तमाम बातों का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जनाब, ओके ओके, बहुत सारे मैसेजेस हैं भाई। लास्ट देख रहा हूं कौन सा है जो पढ़ा था। हाँ, लाला का था कि बहुत अच्छा गाना है। उसके बाद जनाब एने भाई, थैंक यू आपके नोटिक का नाम लिखने का, अमीन चार्ली कह रहे हैं नोट करने का। अच्छा, मेरी जानिब से यूसुफ भाई को एडवांस हैप्पी बर्थडे और लाखों साल मुबारक करे, आमीन सुम आमीन। और थैंक यू कहा है सबा गुल ने सॉन्ग के लिए। थैंक्स लाला, थैंक्स नदीम भाई, ये गाया उन्होंने। हैं जी जी, हैं जी। और आगे बढ़ते हैं तो तमाम ही खूबसूरत और हसीन समातों को फरहान रजा का चाहत भरा सलाम और आदाब से। उम्मीद करता हूं सब खैर आफियत से होंगे अम्मी जी और अम्मी जैसी प्यारी सी आंटी को और तमाम दोस्तों के लिए ढेरों दुआएं। और आंसर उन्होंने बताया चकोर और हॉकी। फरहान भाई आपका भी आंसर जो है हमने नोट कर लिया है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई, ये नाम भी नहीं मेरे समझ में आ रहा। मुसरत बानो लिखा हुआ है मेरा ख्याल। कौमी खेल हॉकी और परिंदा चकोर मेरे लिए दुआ करें, मैं रोड एक्सीडेंट में कमर की हड्डी टूट गई है। अल्लाह हाफिज भी कहा है साथ में। मुसरत बानो, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। ये बहुत खतरनाक होता है भाई कमर की हड्डी, वो जिसको कहते हैं ना कमर टूट जाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा जी, सुने हो हमारी वाइफ को ये सॉन्ग बहुत पसंद है, चाहे। अच्छा जी, इन्होंने गाने का गाया कि उनकी वाइफ को बड़ा पसंद है। ये असल में पता क्या है, ये मस्के लगा रहे हैं क्योंकि मिसेज हमारी जो सलीम एमन है उनके लिए जब कोई शौहर अपनी बीवी को ट्रैक डेडिकेट करता है ना तो पता नहीं कितना मजलूम किस्म का इंसान होता है। तो मैं पता नहीं किस मजलूमियत से वो कह रहा था कि मेरी बेगम को गाना डेडिकेट कर, तो फिर मैं कर देता हूँ। हमारे वो मलक साहब आते हैं ना मलकाने के लिए, उनको भी डेडिकेट करते हैं। और आगे बढ़ते हैं सर जी, आलमगीर का नगमा अगर मुझे वसीम अकरम साहब, आलमगीर साहब का मिली नगमा मेरी क्यू शीट में मौजूद है तो वो जब चलाएंगे तो आपको डेडिकेट कर देंगे। अनीस कह रहे हैं सलाम एने भाई, कैसे हैं आप? और तमाम सुनने वालों को भी उन्होंने सलाम कहा है। अब्दुल वाहिद औरंगी टाउन से कह रहे हैं एने भाई, मैं आज तक किसी आरजे को मैसेज नहीं किया। वाह जी वाह, आज पहली बार आपको मैसेजेस किए है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई जान आपका प्रोग्राम, लव यू यार। अब्दुल वाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितने मैसेज भेजे मैंने तमाम पढ़े। और अनीस कह रहे हैं कल का शो बहुत जबरदस्त था और आज का भी शो अच्छा है, आपने घर बैठे पूरे पाकिस्तान की सैर करा दी थी कल। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, आमीन सुम आमीन। और अच्छा ये मैं आपका मैसेज सलीम अहमद भाई बाद में पढ़ूंगा। वकील भाई भी आ गए हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एफएम 100 की पूरी फैमिली को उन्होंने सलाम कहा है। नदीम भाई रात के शो में आपने मेरा मैसेज इग्नोर कर दिया था। अरे भाई कोई मैसेज इग्नोर नहीं होता, कोई एक आध अगर आगे पीछे हो जाए करे तो उसको दिल पर नहीं लेते शहजादे। और सबीन कह रही हैं शुकोर, सबीन आपने बताया नहीं कि आपने मारखोर क्यों लिखा था परिंदा। पहले मुझे बताओ। अच्छा जी नहीं, एफएम 100 पर 14 अगस्त की सेलिब्रेशन कितने बजे होगी? पता नहीं जनाब, ये हमारे तक अभी तक ये कोई खबर नहीं पहुंची। और आंसर उन्होंने हॉकी चकोर और पता नहीं और क्या लिखा हुआ है, चकोर और चुकर, पता नहीं क्या लिखा है। खैर आपके जवाब भी जो है हमने नोट कर लिए हैं, यानी कि समझ रही है ना आप। चलें
चले जनाब चर्चा बाद में करेंगे, एक मैसेज और प्यारी सी बहना जरीन नूर का पढ़ते हैं और कह रही कल का शो बहुत अच्छा था, पूरे पाकिस्तान की सैर कराई आपने जरीन नूर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब अभी हम एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे संजू को, क्योंकि दोनों के मैसेज साथ साथ आ गए जरीन नूर की जानिब से। किथे गया जी जनाब, एलो फड़ो ये ट्रैक, चल जा भाई, हाँ चल गया ये ट्रैक जनाब जरीन नूर की जानिब से संजू आपके लिए, एलो फड़ो और मुश्क की जानिब से भी।

is the music. Welcome back. अस्सलाम आनंद अली, हाय हाय, क्या गाने आज इनके दो गाने शामिल किए मैंने. आवाज वो सा जगाती हुई आवाज और अब तू शम्मे मोहब्बत. उस दौर में इनके एक से एक सुपर और डुपर हिट गाने जो है वो आ रहे थे. और जनाब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि मैं मैसेज की जानिब जाऊं, मैं आपको अब थोड़ी सी चर्चा की जानिब लेके चला जाता हूं, क्योंकि 1960 से लेकर 1973 तक मैंने आपको बताया कि डॉलर की क्या कीमत थी पाकिस्तान में एक डॉलर की. तो 1973 में, मतलब 1972 में 8.68 रुपए, वो 71 की जंग के बाद जो बड़े थे वो तो बड़े ही थे 4 रुपए, तो एकदम जो है वो समझ लीजिए कि तकरीबन 1.5 रुपया और बढ़ा दिया 1973 में. और ये स्टेबिलिटी रही तकरीबन समझ लीजिए 2 साल. फिर 1975 में एक डॉलर जो है, 1975 में डॉलर की कीमत में कमी वाकया हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9 पैसे की. और उस दौर में 1972, 73, 74, 75 यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो 71, 72, 73, 74, 75 उस दौर में जो है पैसे की भी अहमियत थी, एक पैसा जो होता था उसकी भी जो है औकात थी, यानी कि समझ रहे हैं ना आप. तो 1975 में जो है वो तकरीबन 9 पैसे जो है वो कम हुए. और फिर ये 75 से लेकर, अब जरा ये बड़ा गौर तलब बात है, 1975 से लेकर 1980 तक, यानी कि 1973 को जो कीमत थी उसमें 9 पैसे कमी वाकया हुई, और 1975 में, और उसके बाद वो कमी के बाद जो स्टेबिलिटी थी कि जो एक जगह रुक जाने वाली बात, वो तकरीबन 5 साल तक जो है ये सिलसिलाकार नहीं रहा बल्कि 6 साल तक रहा, यानी कि 1975 से लेकर और 1981 तक 9.90 रुपए ही रहा. ये 10 पैसों का जो मैं साथ में लगा नहीं रहा, वो इसकी वजह ये कि उस वक्त पैसे की भी अहमियत थी. तो यानी कि तकरीबन 6 साल तक डॉलर की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, ये जहन में रखिएगा. अब 1981 के बाद जो है आपको पता ही है कि क्या तब्दीलियां आई. 82 में आ जाइए, एकदम से जो है 2 रुपए बढ़ा दिया गया जनाब 82 में, सिर्फ 82 में, और 2 रुपए बढ़ाकर 11.85 रुपए, मतलब 1.95 रुपए जो है वो बढ़ गया. फिर उसके बाद एक साल के फौरन बाद, यानी कि 1982 के बाद 83 में 13.12 रुपए हो गया, तकरीबन समझ लीजिए 1 रुपया. उसके बाद 84 में आ जाए तो 84 में फिर 1 रुपया बढ़ा दिया, 14 रुपए का हो गया डॉलर. 1985 यानी कि 1985 में और तब्दीली आई जनाब, और 2 रुपए बढ़ा दिए, यानी कि तकरीबन 16.93 रुपए 93 पैसा पर चला गया ये. और 86 में जो है, अब ये आप ये जरा गौर तलब बात है कि 1981 से जो है वो हर साल पैसे बढ़ रहे हैं, ये जहन में रखिएगा. और उन पैसों का आपको बता रहा हूं कि कितने रुपए बढ़ रहे हैं, ये भी जहन में रखिएगा, ठीक है ना. अभी 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया ये सिलसिला, अरे वक्त तो बड़ा तेजी से गुजर रहा है. मैं फौरन से बेशतर जो है ना आगे बढ़ता हूं, 10-10 सालों की जंप तो बहन लगानी नहीं चाहिए वैसे मुझे. फिर जो है 86 में मैंने जैसे आपको बताया 2 रुपए बढ़ा, फिर 1987 में जो है दोबारा 1 रुपया बढ़ा, फिर 88 में जो है वो फिर तकरीबन 60 पैसे बढ़ के 18 रुपए पर हो गया. उसके बाद 89 में यानी कि 89 में तकरीबन 2.5 रुपए बढ़ा, और अब आ जाते हैं जनाब 90 पर, 1990. ओए होए क्या बात है 1990 की. 1990 में जनाब डॉलर जो है वो तकरीबन 2.25 रुपए फिर बढ़ा,
और 21.71 रूपये का हो गया। इसी तरीके से 91 में 23.80 रूपये का हो गया, यानी कि फिर तकरीबन 1.5 रूपया के करीब बढ़ा। और उसके बाद 92 में जो है वो 25 रूपये का डॉलर हो गया, $1.25 के बराबर हो गया। और फिर जो है 93 में, यानी कि फौरन हर साल देखें आप ये पैसे बढ़ रहे हैं कि हर साल पाकिस्तान पस्ती की जानिब जा रहा है, करेंसी डीवैल्यू हो रही है, ये जहन में रखिएगा। और जो है 93 में 28 और फिर 1994 में फिर इसी तरह 2 रूपये बढ़कर जो है वो तकरीबन 30.57 रूपये का हो गया। 95 में 31.64 रूपये, यानी कि फिर 1 रूपये बढ़ गया, 1 रूपये से ज्यादा बढ़ गया। 96 में फिर 36.08 रूपये, एकदम ये अब जंप आई है जो कि तकरीबन 4 रूपये की आई है। अब ये अब आनी नहीं चाहिए, वो तो जंग की वजह से एकदम बढ़ गए थे ना, तो 4 रूपये की जो है जंप लगाई, लेकिन अभी ये जंप छोटी है, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी से ये आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो है ये जब 36 रूपये का हुआ तो उसके बाद 97 में 41 रूपीज का हो गया, 5 रूपये बढ़ गया। फिर 98 में जो है वो 45 रूपये का हो गया, 45 रूपीज, यानी कि फिर 4 रूपये बढ़ गया। अब जो है ना ये जो बढ़त है वो 4-5 रूपये की आ रही है हर साल। 99 में जो है ये तकरीबन 49.50 रूपीज, यानी कि 49.50 रूपये का हो गया। 2000 में 53.65 रूपीज का डॉलर हो गया। इसी तरह इसने एक बड़ी जंप लगाई, 53 से 61 का हो गया 2001 में। फिर 2002 में 59 का हुआ, यानी कि हैरत अंगेज तौर पर जो है वो 1 रूपये की तकरीबन कमी वाकई हुई, 1.5 रूपये की। और 2003 में फिर कमी वाकई हुई हैरत अंगेज तौर पर, वो 57 पर आ गया, यानी कि तकरीबन फिर 2 रूपये की कमी वाकई हुई। फिर 2004 में फिर बढ़ गया जनाब 1 रूपया। फिर 2005 में फिर 1 रूपये और बढ़ गया, और 2006 में फिर 60 रूपये पर पहुंच गया। अच्छा ये अब आपको मैं इसको मुख्तसर ये बता रहा हूं कि ये 2-4-5 रूपये हर साल बढ़ रहे हैं और स्टेबिलिटी कहीं नजर नहीं आ रही 82 के बाद से। और अब जो है मैं डायरेक्ट आ जाता हूं कि 2012 पर आ जाता हूं। 2012 में डॉलर की कीमत जो थी वो 93 रूपीज थी। 2013 में जो है पहली मरतबा ट्रिपल फिगर में आए हम, 101 रूपया हुआ। उसके बाद 2014 में इसी तरीके से जो है सिलसिलाकार बढ़ता गया, एक एक दो दो रुपए करते करते बढ़ते बढ़ते 2018 में आ जाए। 2018 में डॉलर 121.82 रूपये का था। उसके बाद एक दंप, एक और जंप, मतलब अब 10-10, 20-20, 30-30 रूपये की जंप हो रही है। 2019 में 150 रूपये हो गया, 2020 में 161 रूपये हो गया, 2021 में 62 रूपये, सिर्फ 2 रूपये की जो है वो हुई। अब आ जाए 22 में, ठीक है जी। अब आप 21 से 22 में आ रहे हैं, 2021 से 2022 में। 2021 में 162 नहीं 63 लगा लीजिए, क्योंकि अब पैसों की इतनी वो अहमियत है नहीं 21 में, तो 2000 हम राउंड फिगर में 163 का डॉलर। और एक साल के बाद डॉलर चला जाता है 205 रूपये पे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप कितनी लंबी जंप है। 2022 में 205 पर चला जाता है, तरक्की देखें कहां कहां कर रहे हैं। 2023 में जो है वो 205 से 280 पर चला जाता है, डायरेक्टली 75 रूपीज आगे ऊपर। और अब इन द एंड मैं आपको बता देता हूं कि उसके बाद 2024 में जो है 279 हुआ। फिर जो है 2025 और 26 आपको पता ही है, मतलब ये सिलसिलाकार एकदम जो है कि इस वक्त डॉलर जो है उसकी कीमत तकरीबन 280 रूपये ही है। लेकिन इसमें ये है कि हर 2-4 महीने के बाद जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप देखें कि पाकिस्तान कितनी तरक्की की है, करेंसी कितनी डिवैल्यू हुई है। अब इसकी वजह क्या है वो मैं आपको, बहुत जरूरी है कि आप लोगों को इसके बारे में पता चले।
बस उसकी इन द एंड ये बताऊंगा कि उसकी वजह जो है, उसकी वजह है कर्जा। और इसके हवाले से अगली बात जो है हम आपको बाद में बताएंगे। फौरन से पेशतर आपके मैसेजेस की जानिब जाए। कमाल की मालूमात रूहे मन, अगस्त की माह आजादी की भरपूर तैयारियों से आए। नहीं, आप यकीन माने संजू कि ये तैयारियां कोई नहीं है, ये जनरल नॉलेज है और इसके बारे में पढ़ा हुआ है पहले से ही। और बस समझ लीजिए कि रिवाइव हो रहा है, मतलब उसकी दोहरा रहा हूं मैं। मेरी जो है वो नॉलेज में बस वो चीजें जैसे जैसे आती हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देता हूं। थैंक यू का है हैंडसम इन्फॉर्मेशन के लिए मुश्क ने। वकीद साहब कह रहे हैं 500 की फैमिली से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें। नहीं, पूरा मैसेज पढ़ा। नदीम भाई, आज हमारे गांव में खौफनाक हादसा जिनमें 3 लड़के फौत हो गए हैं एक्सीडेंट की वजह से। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए जनाब। उनके लिए बहुत सारी दुआएं वकीद भाई, ठीक है जनाब। और कुछ मैसेजेस और, ये भाई ICPYC रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। और आपका मैसेज जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, अमानत अली समझ में आया है, हमने बार बार सुना और टीवी पर देखा। अच्छा जी, एक गाना ACAD। अच्छा जी, नदीम भाई मेरा नाम वाहिद नहीं वाजिद है। अरे वाजिद भाई सॉरी, जो अब्बा जान ने रखा था भाई माजरत के साथ। नहीं, मैं माजरत चाहूंगा आपसे। उसकी वजह ये वाजिद भाई कि हमारे एक बहुत ही मेरे प्यारे से भाई, बड़े भाइयों की तरह, मतलब अंकल हैं वो, लेकिन मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं वो। वो हैदराबाद में होते हैं, उनका नाम अब्दुल वाहिद है, तो मेरे मुंह पर वाहिद चढ़ गया, तो इस वजह से ये मेरी गलती है, जिसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूं। और वाजिद भाई अब आपका नाम वाजिद के नाम से ही पुकारेंगे। तो सुने हो, इसके साथ ही अब मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। और हमारे प्यारे से वसीम अकरम साहब ने कहा था कि भाई आलमगीर साहब का कोई कौमी नगमा जरूर चलाइएगा, तो उनकी फरमाइश सराखों पर आप सबको डेडिकेट करेंगे, उनकी जानिब से भी ट्रैक और उसके साथ साथ मुश्क की जानिब से भी ट्रैक डेडिकेट करेंगे संजू को। उसने कहा था, उसका नाम नहीं ले सका था मैं, और हमारे यूसुफ भाई को भी और हमारे अमीन भाई को भी। तो चाहूंगा जनाब आप लोगों से इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।

सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा मसला है कि भाई ट्राई करके देखते हैं। देखते हैं भाई, जब इतना सुना है तो कुछ ना कुछ तो मसला होगा ना कोई तो गल होगी ना। चलो फिर चलिए फिर। और जनाब हमें ज्वाइन कर लिया है यूट्यूब पर, हमारे साथ मौजूद है जनाब मिर्जा शुजात फ्राम गुजर खान। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, की हालत तो सन ठीक हो वालो। माशाल्लाह बहुत खूब, आज सब रंग से स्टूडियो का खूब सजा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, हमारा परचम ये प्यारा परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। तो यही वाकई हमारा परचम, ये प्यारा परचम। मगर पता अफसोस क्या होता है कि जब 14 अगस्त आती है और ये दिन जब करीब होता है, ये जब अगस्त का महीना शुरू होता है पहली तारीख से, और फिर उसके बाद लोगों में जोश और वलवला, चाहे दिखाने को सही मगर उठता है, ये जोश होता है, झंडिये भी रखती हैं ठीक ठाक किस्म की, और जैसी 14 अगस्त गुजरती है, रात गुजरी 14 अगस्त की, आप देखें उसके बाद सेकेंड डे जो है, और फिर वो झंडी कहाँ होती है, झंडे कहाँ होते हैं, कोई फिर वहां पर कोई कदरों कीमत नहीं होती, वहां पर कोई जोश नहीं होता, कोई जज्बा नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है, कौमी परचम जो ना, कौमी परचम ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये अगर आईन में भी देखा जाए हमारे पाकिस्तान के या हर मुल्क के आईन में, कौमी परचम की तौहीन जो है वो बहुत बड़ा जुर्म होती है, बहुत बड़ा जुर्म होती है। मगर हमारे यहाँ झंडिये देखें, बाद में 14 अगस्त गुजरने के बाद दूसरे दिन झंडिये झंडे गिरे होंगे, कचरे में पड़े होंगे, कहीं पाओ के नीचे आ रहे होंगे, कहीं इधर हो गए, कहीं उधर गंदे पानी पड़े होंगे, नाले में पड़े होंगे, नदी में पड़े होंगे, कोई देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं होता। तो वो सारा जोश और जज्बा कहाँ जाता है भाई? अगर आप 14 अगस्त गुजर चुकी है उसके बाद अगर आपने उसको उतारना है और उसको कोई केयर नहीं करनी, तो उतारे उसको रख दे, उतार के रख दे, या कहीं उतारे और समेट के किसी कोने में डाल दे, किसी एक जगह रख दे, कम से कम एहतराम तो रहेगा ना। कौमी परचम हमारा, हमारी मादर वतन, हमारी माँ जिसकी गोद में हम पढ़ रहे हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया, हमें नाम दिया, हमें इज्जत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया हमें, हम इसकी इसके परचम की क्या खेल नहीं कर सकते? सिर्फ एक दिन का जोश हमें होता है, बस चलो जी ठीक है जी, बस लगाई और बड़ा जोश, अब मिली नक में भी लग रहे हैं और खूब चल रहे हैं, खूब स्पीकरों में खूब दबा के गाने चल रहे हैं। मगर वो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, बेशक आप जाहिर ना करें, बेशक आप मिली नक में ना चलाएं, बेशक आप कुछ ना करें, मगर वो जज्बा हमारे अंदर मौजूद हो, हमारे अंदर दिल में, हमारे सोच में, हमारे जहन में वो जज्बा मौजूद हो, तो फिर वो जज्बा काम का होगा, फिर हम अपने मुल्क की सही तौर पर खिदमत कर सकेंगे, अपने मुल्क का एहसास कर सकेंगे, फिर हम कह सकेंगे कि हम वाकई हम पाकिस्तानी हैं, हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। सिर्फ झंडे लगाने से पाकिस्तानी कहाँ बन जाते हैं, कहाँ होता है, किसी मुल्क में ऐसा होता है कि झंडे लगाने से आप उस वतन के बन जाए? नहीं, जब तक कि आपके अंदर, आपके अंदर, आपके रूह में, आपकी सोच में, आपके दिल में वो उसके लिए जज्बा ना हो, उसके लिए हुबुल वतनी मौजूद ना हो, जब तक ये सारी चीजें बेकार हो जाती हैं, सारी चीजें। कितना मुश्किल है कयामत की कयादत करना, कितना मुश्किल है कयामत की कयादत करना। आप आसान समझते हैं मोहब्बत करना, आप आसान समझते हैं मोहब्बत करना, फर्श के बुझते सितारों पे हुकूमत करना, फर्श के बुझते सितारों पे हुकूमत करना, शाने मर्दाना नहीं ऐसी सियासत करना, शाने मर्दाना नहीं ऐसी सियासत करना, दिल की दीवारों पे आयात मोहब्बत लिखकर, दिल की दीवारों पे आयात मोहब्बत लिखकर, हिजर की रात सताए तो तिलावत करना, हिजर की रात सताए तो तिलावत करना, तीर बनकर वो उतर जाती है, तीर बनकर वो उतर जाती है दिल में उसके,
تیر بن کر اتر جاتی ہے دل میں اس کے. ایک مجروح تبسم سے شکایت کرنا, ایک مجروح تبسم سے شکایت کرنا. کہہ دو شیشے کے بدن والوں سے محتاط رہیں, کہہ دو شیشے کے بدن والوں سے محتاط رہیں. بھاری پڑ جائے نہ پتھر کی حمایت کرنا, بھاری نہ پڑ جائے پتھر کی حمایت کرنا. بعد مرنے کے وہ زندہ ہے, رہے گا زندہ. بعد مرنے کے وہ زندہ ہے, رہے گا زندہ. جس کو آ جاتا ہے مقتل میں عبادت کرنا, جس کو آ جاتا ہے مقتل میں عبادت کرنا. معتبر ہے جو تیرے شہر غزل میں اشرف, معتبر ہے جو تیرے شہر غزل میں اشرف. اس کو سکھایا ہے لفظوں نے امامت کرنا, اس کو سکھایا ہے لفظوں نے امامت کرنا. کتنا مشکل ہے, کتنا مشکل ہے قیامت کی قیادت کرنا, کتنا مشکل ہے قیامت کی قیادت کرنا. آپ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا, آپ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا. محبت ہمیں کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے, بڑے اس میں بھی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. دل کی دیواروں پہ آیات محبت لکھ کر, دل کی دیواروں پہ آیات محبت لکھ کر. ہجر کی رات ستائے تو تلاوت کرنا, ہجر کی رات ستائے تو تلاوت کرنا. بعد مرنے کے وہ زندہ ہے, بعد مرنے کے وہ زندہ ہے, رہے گا زندہ. بعد مرنے کے وہ زندہ ہے, رہے گا زندہ. جس کو آ جاتا ہے مقتل میں عبادت کرنا, جس کو آ جاتا ہے مقتل میں عبادت کرنا. معتبر ہے جو تیرے شہر غزل میں اشرف, معتبر ہے جو تیرے شہر غزل میں اشرف. اس کو سکھلایا ہے لفظوں نے امامت کرنا, اس کو سکھلایا ہے لفظوں نے امامت کرنا. آپ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا, آپ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا.

ये वतन तुम्हारा है, तुम पासवां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम नगमा खां इसके, वक्त 2:00 तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं एफएम इंडिया पाकिस्तान के कराची स्टेशन से, मैं आपके साथ मौजूद हूँ, मुझे कहते हैं अजमल खान शोभी और जनाब एसएमएस भी शामिल करते चलें, सलाम जशन शोभी भाई साहिबजादा, थैंक यू जजाकल्ला आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, खुश रहें सलामत रहें। और उसके साथ साथ हमें जवान गया ताहिरा मसूद ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम ताहिरा मसूद, कैसी हैं, खुश आमद कहते हैं आपको। और जनाब इसके बाद चलते हैं जरा आगे, हुमा क्या कहती है, मिली सॉन्ग जबरदस्त प्ले कर रही हैं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और मैं आज़ाद हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल यही होना चाहिए। हम यकीन पता, हम अपने इस मादरे वतन में एक आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। इन जनरल पता मसले, ये सब मसले अपनी जगह हैं, हम अगर सब कुछ छोड़ के हम सिर्फ अपने घर की बात करें तो अपने हमारे घर के अंदर भी मसाइल पैदा होते हैं ना, कभी कुछ हो रहा है, किसी से कुछ पड़ रहा है, किसी से बात नहीं है, किसी से ये, किसी की खिंच खिंच खिंच पिच पिच घर में भी चलती है। तो अगर मुल्क में हो रही तो ये तो इतना बड़ा मुल्क है, जब एक चल रहा सिलसिला तो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी जमातें और ये वो तमाम सिलसिले होते हैं, इसलिए हम ये ना कहेंगे यार मुल्क देखिए, मगर हम पहल अपनी आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जनाब अब यूं करते हैं कि मैं सोच रहा हूँ एक मिली नगमा और हम प्ले कर लेते हैं, और ये मिली नगमा जो है वो जनाब इमरान खालिद खान साहब ने कहा था हारून की आवाज़ में दिल से, तो ये बड़ा बहुत अपने वक्त का बड़ा खूबसूरत नगमा रहा है, ये भी शामिल कर लेते हैं, मिली नगमा है तो वैसे तो आपको टेम्पो फास्ट मगर है कि बहरहाल एक मिली नगमा शामिल करते हैं इमरान खालिद खान साहब के लिए।

जंजीर जो पहनाओ की झनकार तो होगी, बिल्कुल बात तो सच है। ये लिख बात है कि बात रुसवाई की है मगर बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। और जनाब वक्त दो बजकर तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं, बस हमें इश्क में बीमार रहने दो, हमें इश्क में बीमार रहने दो, हमदर्दी ना करो यार रहने दो, हमें इश्क में बीमार रहने दो, हमदर्दी ना करो यार रहने दो, आप कीमती किताब ही सही, आप कीमती किताब ही सही, हमें दो कौड़ी का अखबार रहने दो, आप कीमती किताब सही, हमें दो कौड़ी का अखबार रहने दो, आपके रहबर बहुत आला, आपके रहबर बहुत आला, हमें उनका पैरोकार रहने दो, हमें उनका पैरोकार रहने दो, गमे जिंदगी जी लेने दो, गमे जिंदगी जी लेने दो, बुलाओ नहीं बार बार रहने दो, बुलाओ नहीं बार बार रहने दो, ये बुलाते हैं बेवफाई को, ये बुलाते हैं बेवफाई को, हुस्न को उनका वफादार रहने दो, ये बुलाते हैं बेवफाई को, हुस्न को उनका वफादार रहने दो, आप कीमती किताब सही, आप कीमती किताब सही, हमें दो कौड़ी का अखबार रहने दो, गमे जिंदगी जीने दो, गमे जिंदगी जी लेने दो, बुलाओ नहीं बुलाओ नहीं बार बार रहने दो, ये बुलाते हैं बेवफाई को, ये बुलाते हैं बेवफाई को, हुस्न को उनका वफादार रहने दो, हुस्न को उनका वफादार रहने दो, और अब इसके बाद यूं करते हैं कि हम शामिल करते हैं एक और खूबसूरत सा मिली नगमा शहनाज बेगम की आवाज में।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।